0: इस मुद्दा पर बदकिस्मती से ये धर्मों के और लॉन्ग मार्चेस के भयानक साए हैं तो दोबारा नमोजार हो रहे हैं।
1: नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उसको हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, किसी जुर्म नहीं होने देंगे। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा इंशाल्लाह। हमारी जिम्मेदारी है उसको इंशाल्लाह हम हर तरीके से उसको हम इंशाल्लाह उसको इंश्योर करेंगे। मैं भी उनको कहूंगा कि आप अपनी रोज के नाखून को क्या आपकी ये कार्रवाई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी या फायदा पहुंचाएगी, ये पूरी कौम इस बात से आगाह है। मैं अभी भी आपको ये गुजारिश करूंगा कि आप रोज के नाखून लें, इस आप लॉन्ग मार्च को धरनों को आप इसको खत्म करें और खत्म करेंगे तो हम यकीनन आपके साथ बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे।
2: वजीर आजम शहबाज शरीफ जी पी टी आई के गाली नामशुद आज लॉन्ग मार्च से धरनों खत्म करने जो शर्त रखी छो इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कहते वजीर आजम शहबाज शरीफ चो धरने लॉन्ग मार्च वाली सियासत जो पे निशानो मैशियत हूँ हुकूमत नेक नियती से पी टी आई से गाल मैशी फिती के बीहर रोकण मुल्क दुश्मनी ना पी टी आई वारा होश का कम वठन लॉन्ग मार्च खत्म कन तो बीहर गाल सन थी।

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
1: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग।
0: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
1: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
2: सुपर वाइट।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अरे न, खुश ऐं बीरोनो की स्किन, हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट। पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिंमें आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन, जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे। ऐं चांवरनि जूं खूबियूं, जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे। सिर्फ़ टिनि ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिंजे हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
5: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाख़ाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली।

0: पई वञे जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट, सभिनी मरीजनि खे लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ां मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
1: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीजनि जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर

0: हुजे या बादी आराम लाए आज़मूदा कोरस निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंध हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां शाम जो 5 वगे ताईं हमजा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाए फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287 सुकून एतमाद ऐं सेहतमंद जिंदगी ॾांहुं कदम
1: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331-252-5786
2: जी हा 2315-2575-786
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दिहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अरे न खुश ए बीरोनो की स्किन हर इन जे लाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जेमे आहिन चावरन जी खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जी खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कन आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम ईहन में जिल्द के बनाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
2: छा तव्हां जोड़न जे सूर पुठन जी तकलीफ़ कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़न पुठन कुल्हन ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287 ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी
3: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ए दवाऊं मुफ्त में डिनियूं वेंदियूं मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरो ए थाऊं खणी अचन तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
6: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
8: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
9: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
10: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
6: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
11: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
12: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
3: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
6: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए टे डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखला है ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वे जे में अखियन जी बीमारियों जा माहिर डॉक्टर उन्हन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा। अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सगो था। हंद फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनियो वेंदू। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओ खड़ी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
9: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
10: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
11: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
10: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
11: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
10: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
12: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
11: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10%।

0: आद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125257 86।
2: जी हां 2315525786
1: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इस गाने के साथ मैं आपको बताऊंगी कि हम प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है।

आज के प्रोग्राम में हम आगे चलेंगे और प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888 1 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा GFM88 के नाम से, जो कि फेसबुक के ऊपर आपको मिलेगा. और जी आप उसके नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि जो पोस्ट आपको मिलेगी जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000118. के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सॉन्ग हम प्ले करेंगे. और नेक्स्ट सॉन्ग जो कि बहुत अच्छा होगा, इसको हम प्ले करेंगे रिमिक्स वर्जन में. और इसी के साथ हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानेब भी जाएंगे. तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे मैं खुश और बीरोनों की स्किन हर उन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट रॉयस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहमे आहिन चार रंग की खूबियों आई कोच एक ऐसी फॉर्मुलेशन जो जिंद के रिस्टोर करे उन्हें जी नमी की लॉक करे आई चार रंग की खूबियों जिंद में फाइन लाइंस एंड झुरन की घट कर एंड रिंकल्स की घट करे सिर्फ ट्रिम बीहन में जिंद के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उनसा जरूरत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर में रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट रॉयस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वने जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फायदो हासिल करे सगो था। हंद फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनी वेंदू मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाव खी अचन तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निजामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी यादि रख निजामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो निजामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
6: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
6: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हए में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमज़ोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
8: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 247-32

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है। और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी प्रोग्राम में तीन तरीके कार से, आप लोग मुझे अब कॉल भी कर सकते हैं। हमारा सेगमेंट हो गया जी सिर लगाओ गाना सुनाओ, और सिर लगाओ गाना सुनाओ में हम आप लोगों से सुनेंगे एक अदद गाना। तो गाना सुनाने के लिए और कॉल पे आने के लिए आप लोगों को कॉल मिलानी होगी, तो कॉल कीजिएगा 03000113488 के ऊपर। इसके ऊपर कॉल करेंगे तो आप कॉल लगा पाएंगे, कॉल मिला पाएंगे और मुझसे बात कर पाएंगे और एक अच्छा सा गाना सुना पाएंगे। और इसके साथ साथ जी जो डेली बेसिस पे कॉल करते हैं, तो डेली सैमसंग कॉलर्स आर नॉट अलाउड, इस बात का खास ख्याल रखते हुए आप लोगों ने कॉल करनी है। और साथ साथ आप लोग मुझे 8881 पे भी मैसेजेस कर सकते हैं, आप लोग मुझे कॉमेंट कर सकते हैं हमारे पेज के ऊपर, आपको पोस्ट मिलती है जिंदगी गुलजार है कि इसके नीचे आप लोग कॉमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कॉलर मेरे लाइन पे मौजूद है, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: हाफिज लक्ष्मी,
0: हाफिज लक्ष्मी आपकी कल कॉल लगी थी लेकिन आज लगा ली है दोबारा, तो मुझे गाना सुना दें जल्दी से और फिर अगले दो दिन तक कॉल नहीं लगानी, ठीक है? सॉरी आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, प्लीज सही से बात करें, मतलब सही जगह पे जाके बात करें।
1: जी
0: काफी डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है, मुझे बताएं कि गाना कौन सा सुनाएंगे?
1: ये गाना सुनाऊंगा वो प्ले करना।
0: ओके सुनाएं।
1: जी महबूब तो दिस मुखदर मोजो हासिल भी न थे बदनाम बुझा, महबूब तो दिस मुखदर मोजो हासिल भी न थे बदनाम बुझा। जी ये गाना है।
0: ओके किसी को डेडिकेशन?
1: हाफिज साहब, ढिलू साहब, शहर ढिलू साहब, मोहम्मद कासिम ढिलू साहब और सर दर्द साहिबा और मुस्कान साहिबा और जो भी सुन रहे हैं सबको सलाम।
0: ओके जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। और ये थे कॉलर 03000113488 के ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हैं मुझे। ओके नेक्स्ट कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके जी हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: सलाम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं कहाँ से? हाफिज सावर भाई, कैसे ठीक ठाक?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: ये प्रोग्राम सुन रहा।
0: ओके गाना सुनाएंगे?
2: ये गाना सुनाऊंगा।
0: रोने धोने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है?
2: नहीं नहीं
0: सुना दे।
2: मशरत मशरत
0: ओके किसी को डेडिकेशन है?
2: आप लख मेरा मैं घटना
0: ओके जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और भाई का गाना हम प्ले करेंगे।

के जी गाना हम प्ले करेंगे, गाना सुनते सुनते हम मजीद और बहुत सारे लाइव कॉल्स को एंटरटेन करेंगे। सो हियर कम्स अ सॉन्ग जो कि हमें भाई ने सुना दिया है, सुनते और आगे चलते हैं।

0: ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग, और सॉन्ग के साथ साथ एक और कॉलर लाइन पे मौजूद है। हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, कैसी हो?
1: आप बताइए।
0: मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बताओ कि प्रोग्राम सुन रही हो? ऐसे थोड़ी ना कॉल करती है। अच्छा, मुझे बताओ कि गाना सुनाना है?
1: जी सुनाए।
0: तो सुना दे, अच्छा सा, रोने धोने वाला बिल्कुल नहीं।

0: ओके, लेकिन ये तो बॉलीवुड कंटेंट है, ये कैसे प्ले करूं मैं?
1: अरे मुझे पता नहीं था वैसे सर।
0: चलो मैं अपनी तरफ से कोई प्ले कर दूं अच्छा सा?
1: हाँ प्ले कर दो, मुझे डेडिकेट।
0: चले मैं प्ले कर देती हूँ। किसको डेडिकेट करेंगी?
1: मुझे डेडिकेट कर दो।
0: अच्छा आपको कर दो, चले मैं आपको कर देती हूँ।
1: अच्छा दूसरा वाला सेगमेंट भी रखिए ना
0: जी। कंटेस्टर वाला सेगमेंट आज करेंगे हम, और क्या करेंगे? हाँ आज करेंगे हम हरा भरा पाकिस्तान की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सरदर्द, अपना बहुत सारा ख्याल रखो।
1: अल्लाह
0: हाफिज़ जी, थैंक यू। ओके जी, इस वक्त हमें बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ साथ मौजूद हैं नजीर धारी जो, वहीद भाइयो, श्यमन भाइयो, मुमताज भाइयो और दिलशाद भाइयो हमें सुन रहे हैं। आप तमाम लोगों को हम खुश आमदी कह रहे हैं जी प्रोग्राम में। आप हमें सुन रहे हैं इतने गौर से, इतने शौक से। नजीर धारी जो, वहीद भाइयो, श्यमन भाइयो, मुमताज भाइयो और दिलशाद भाइयो, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो।

जानिया। ओके जी, और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं और इसके साथ साथ जी मुझे जो स्पेशल डेडिकेशन आई है, असल में उन्होंने करनी है रिकॉर्डिंग, सो हम एक बार उनका फिर से नाम ले लेंगे जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नजीर धारी जो, वहीद भाइयों, शमन भाइयों, मुमताज भाइयों और दिलशाद भाइयों इस वक्त हमें सुन रहे हैं। आप तमाम लोगों को हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में कि आप इतना शौक से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं जी। थैंक यू सो मच नजीर धारी जो, वहीद भाइयों, शमन भाइयों, मुमताज भाइयों और दिलशाद भाइयों, आपके लिए हम एक अच्छा सा गाना भी प्ले करेंगे नुसरत अली खान की आवाज में, ठीक है जी। और ये हम मेरे ख्याल से प्ले भी कर देते हैं और प्ले करके हम जाएंगे न्यूज ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक दोनों की तरफ, दोनों के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: قطر جي ساگزي ۾ آمريڪا ۽ ايران جون ڳالهيون جاري آهن. ڳالهين کي نتيجن تائين پهچائڻ واريون کوششون بھی جاري آهن. قطري پرڏيهي وزارت جي ڊائريڪٽر ابراهيم بن سلطان الهاشمي چيو آهي ته مڪي اتحاد خطي جي ملڪن جي وسيلن جي تحفظ ۽ استحڪام يقيني بڻائڻ لاءِ سهڪار کي وڌيڪ مضبوط ڪندو. ایران سان جنگ میں امریکہ جا 81 جنگی جہاز تباہ یا متاثر تھیا ہیں. امریکہ کے کانسٹن کے ریسرچ سروس رپورٹ میں انشاف رپورٹ میں جانا ویو ہے تو امریکہ کے تباہ یا متاثر تھے جہازن میں وڑاک جہاز ہیلی کاپٹرز بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں ایم کیو 9 ریپیئر ڈرونز شامل ہیں. سندھوانا یا وزیرستان ناڑے جو माण्हू FIR दाख़िल करण में देर कंदा. वाना में बि माण्हू केस रिपोर्ट कराइनि था, सिंध में छो नथा अचनि? सुप्रीम कोर्ट जा सिंध में FIR दाख़िल करण में देर वारे केस ते सख़्त रिमार्क. सुप्रीम कोर्ट पारां FIR में शिकायत कंदड़ बदिरां दरख़्वास्त ॾींदड़ जो लफ़्ज़ इस्तेमाल कंदड़ जी हिदायत. ॿुधणी दौरान DIG सखर नायब नासिर आफ़्ताब ऐं SSP खैरपुर अमीर सऊद मंगसी सुप्रीम कोर्ट में पेश थिया. पुलिस इख़्तियारनि IG सिंध जी हिदायत ते FIR में देर बाबति रिपोर्ट बि सुप्रीम कोर्ट में पेश कई. सिंध में FIR दाख़िल थियण में देर ते सुप्रीम कोर्ट पारां सिंध पुलिस ते सख़्त कावड़ जो इज़हार कयो. मंज़ूराबाद में ॿिनि धुरियुनि में झेड़े बाद हिकु धुर जो इंडस हाईवे ते धरणो. गोठ सूमर बुफत में ज़मीन जी मालिकियत तां झेड़े बाद औरतनि ऐं ॿारनि इंडस हाईवे ते धरणो हयो. मुज़ाहिरीन मूजिब सत्तार ऐं संदसि माण्हुनि असां मथां हमिलो कयो आहे. जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे.
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में. आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है. GAFM 88 नेटवर्क. GAFM 88 नेटवर्क. सिंध की आवाज.
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है.
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है. तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है.
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम.
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत. एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन.
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है.
3: सुपर वाइट.
6: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस. हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे. ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं. हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली. राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287. ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी.
7: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप. प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा. अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था. हंधु फारान शुगर डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी. नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं. मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि. तरफ़ां मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप.
3: खुशखबरी
8: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
9: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
10: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
11: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
10: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
11: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
10: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरत औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
12: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
11: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 247-32

0: हाय जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार हैं और मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आकर मेरा साथ पूरी एक बजे तक का है जी. और ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं. हमारा सेगमेंट है हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है HFT पाकिस्तान, यानी कि हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान, जिसमें आज हम मौजूद हैं एक और सेगमेंट के साथ और एक और नए गेस्ट के साथ. तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो कि हमारे साथ ऑनियर होंगे अब से कुछ देर बाद, जो कि हैं मिस्टर अब्दुल रऊफ, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पे भी मौजूद होंगे. और इनका तारुफ मैं आपसे करवाती जाऊं. मिस्टर अब्दुल रऊफ जो कि PhD स्कॉलर हैं, कॉलेज ऑफ प्लांट साइंस वाजोंग, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वुहान चाइना से इनका ताल्लुक है जी. और इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं. इनको कहेंगे खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने इस खूबसूरत अंदाज में मेरा तारुफ करवाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ.
0: ओके जी, मिस्टर अब्दुल रऊफ, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ हमारे सेगमेंट में इस वक्त मौजूद हैं.
1: बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस ये मौका दिया. मैं अगेन आपका शुक्रगुजार हूँ.
0: ओके जी, मिस्टर अब्दुल रऊफ, हमें बताइएगा इस मतलब कि स्पेशल टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक पौधा एक सोच एक बेहतर पाकिस्तान. तो आपसे सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी कि एक पौधा एक सोच एक बेहतर पाकिस्तान, इस उन्वान के पीछे असल सोच क्या है? क्या एक छोटा सा पौधा वाकई एक बड़ी माहौलियाती सोच की शुरुआत बन सकता है?
1: बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पे इस बात को रियलिस्टिक रखना चाहता हूँ कि एक पौधा अकेला क्लाइमेट चेंज तो मतलब कि उसको प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाता, मगर एक पौधा इंसान को एनवायरनमेंट समझने के लिए पहला प्रैक्टिकल मौका जरूर देता है. जैसे हम हॉर्टिकल्चर में कहते हैं कि जो प्लांट सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, एक लिविंग सिस्टम है. अगर आपको वो जाहिर सी बात है सनलाइट यूज करता है, ट्रांसपायरेशन के जरिए पानी एटमॉस्फेयर में वो रिलीज करता है, उसे बारिशें होती हैं तो शेड क्रिएट करता है, तो आसपास के जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है, तो वो आपकी एक सोच को डेवलप करने में बहुत किरदार अदा करता है. और अगर एक छोटी सी सोच हर इंसान के अंदर आ जाए तो वो मिलकर पूरे एनवायरनमेंट को आखिर में चेंज कर सकता है.
0: ओके जी, तो मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का मौसम और माहौल बहुत मुख्तलिफ है. आम आदमी अपने घर छत और बालकनी या गली या दुकान से माहौल के लिए क्या अमली शुरुआत कर सकता है पौधों को लेकर?
1: बिल्कुल, मैं आमतौर पर यही कहता हूँ कि पहला काम प्लांट खरीदना नहीं है, बल्कि आपको उस जगह को समझना या पढ़ने की कोशिश करना है कि जहाँ पे आपने ये सब काम करना है. देखिए, हम देखते हैं कि धूप कितने घंटे आती है, हवा का रुख क्या है, गर्मी कहाँ ज्यादा कलेक्ट होती है, पानी की अवेलेबिलिटी उसमें क्या है, फिर उसका ड्रेनेज सिस्टम क्या है. तो फिर उस जगह के मुताबिक हम प्लांट को चूज करते हैं. छोटी बालकनी है तो कंटेनर या पॉट्स में हम जो है धूप वाली जगह पर सूटेबल प्लांट्स को रख सकते हैं. क्लाइंबर जैसे हम बेलें जिनको कहते हैं वो हम लगा सकते हैं छोटे बड़े कंटेनर्स में. तो पानी बचाने के कभी भी मुमकिन तरीका है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अपनी बैल्कनी यूज कर रहे हैं तो उसमें फिर हमारी बैल्कनी को भी पानी के सीपेज की वजह से नुकसान हो सकता है. तो हम देखते हैं कि हमें कितना पानी और किस वक्त पानी प्लांट्स को देना है ताकि उनकी जरूरियात भी पूरी हो और हमारा जो मकसद है एक एनवायरनमेंट को बेटर करने का वो भी हमारा पूरा हो जाए.
0: बिल्कुल जी. अच्छा, हमें ये भी आप बताइएगा कि साथ साथ मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है और साया और सब्जा हमारे आसपास के छोटे माहौल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं?
1: जी, माइक्रो क्लाइमेट सादा अल्फाज में मैं आपको एक बता सकता हूँ कि एक छोटी सी जगह पर आपका मौसम कैसा है, इसको माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं. टेक्निकली तौर पर हम टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी, हवा और सनलाइट या रेडिएंट हीट को भी देखते हैं कि उस एरिया में या उस छोटी सी जगह में कितना इन चीजों का असर है. अगर आप एक कंक्रीट की दीवार के पास धूप में अगर खड़े हों और फिर घने दरख्त के नीचे अगर आप चले जाएं तो आपको दोनों जगह पर वेदर जो है और टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेगा. तो प्लांट दो इम्पोर्टेंट काम करता है, पहला शेड फिर उस जिससे सरफेस डायरेक्ट सनलाइट से बचाती हैं, और दूसरा जो है ट्रांसपायरेशन, यानी ट्रांसपायरेशन का मतलब है लीव के थ्रू जो है वो हमारा लीव के थ्रू पानी जो है वो इन्वायरमेंट में जाता है, तो वो एक पूरा माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करता है जिससे ना सिर्फ गर्मी कम होती है और जो है माहौल बहुत हमें कंफर्टेबल महसूस होता है।
0: अच्छा, आप हमें बताइए क्या हर इलाके में एक ही किस्म का पौधा लगाना सही है?
1: नहीं, हॉर्टिकल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि राइट प्लांट राइट प्लेस। पाकिस्तान में कोस्टल एरियाज हैं, एरिड एरियाज हैं, यानी हमारे पास मैदानी एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इसके अलावा सब ट्रॉपिकल है, फिर हमारे पास जो नॉर्दर्न एरियाज में जाहिर सी बात है स्नोफॉल वगैरह होती है, तो हमारे पास बहुत अच्छा जो है ना इन्वायरमेंट है, हर तरह का इन्वायरमेंट है। हम प्लांट सेलेक्ट करते वक्त सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं देखते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट ये बात मैं कह रहा हूँ, उसकी टेम्परेचर टॉलरेंस देखते हैं कि अगर वो हम मुल्तान में लगा रहे हैं या कराची में लगा रहे हैं तो वहां पे इस प्रकार का टेम्परेचर ज्यादा है, या सिंध में लगा रहे हैं तो पानी और टेम्परेचर वगैरह देखते हैं, सनलाइट देखते हैं, फिर सॉइल टाइप क्या है, हमारी मिट्टी की किस्म क्या है, फिर जाहिर सी बात है हम यहाँ पर बात क्रॉप्स की नहीं जा रहे, तो जो शेडी प्लांट्स हैं या जो माहौल को खूबसूरत बनाने वाले प्लांट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम अपना इलाका भी देखते हैं कि उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं है, तो उसमें कौन सा प्रॉपर प्लांट हमें लगाना चाहिए। कि एक ट्री लगाते वक्त हमें सोचना होता है कि 10 साल के बाद उसकी कैनोपी यानी उसका जो एरिया है पत्तों का और रूट्स कहाँ होंगी, क्या जो हमारे पास ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, रूट्स के लिए कितनी स्पेस चाहिए, पानी रेगुलर उसको कितना मिल सकता है। तो अच्छी हॉर्टिकल्चर वो नहीं है जो प्लांटिंग के दिन अच्छी नजर आए, अच्छी हॉर्टिकल्चर वो होती है जो 10 साल बाद भी सही जगह पर हेल्दी खड़ी हो और हमें वो फायदा दे रही हो प्लांट्स, मेरा कहने का यही मकसद है।
0: अच्छा, साथ साथ आप हमें ये भी बताइए कि पाकिस्तान में जब हम पौधे का इंतखाब कर रहे हो लगाने के लिए, तो उसका इंतखाब करते वक्त मकामी आबो हवा, पानी की दस्तियाबी और जगह को कितनी अहमियत देनी चाहिए?
1: बिल्कुल, ये तो सबसे अहम चीज है। अब जाहिर सी बात है एक पौधा जो है, सादा मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं अपने लिसनर्स को, कि अगर हम एक सेब का पौधा जो कि पहाड़ी इलाकों में ग्रो होता है, वो मैं अगर मुल्तान या कराची या सिंध के कुछ इलाकों में या बलूचिस्तान में खुश्क एरियाज में लगाऊंगा तो वो नहीं ग्रो करेगा। तो एक प्लांट को सिलेक्ट करते वक्त हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं कि वो प्लांट हम खूबसूरती के लिए भी चाहिए, शेड के लिए भी चाहिए, या फ्रूट के लिए लगा रहे हैं तो कौन सा उसका इन्वायरमेंट बेटर है ताकि वो हमारे पास सस्टेन कर सके। तो उससे हम जो है सिलेक्शन फिर करते हैं कि वो हमारा शेड का पर्पज है, खूबसूरती का पर्पज है, और क्या वो हमारा फ्रूटिंग का पर्पज है, वो हमारा पर्पज क्या है, गली में लगाना है, घर में लगाना है, कहाँ पे लगाना है। तो जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमें सॉइल देखनी होती है, टेम्परेचर देखना होता है, फिर ड्रेनेज सिस्टम देखना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी रूट्स जो है जड़े वो जमीन में जाएंगी तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम उसको इफेक्ट ना पड़े उसकी रूट्स की वजह से। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि वो हमारी हॉर्टिकल्चर में कहते हैं कि वो हार्डी प्लांट है या सॉफ्ट प्लांट है, सकुलेंट है, इससे मुराद ये है कि वो हार्डी प्लांट से मुराद ये कि वो सख्त इन्वायरमेंट में, जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, फिर फ्लडिंग वगैरह भी बहुत होने लग गई है, अचानक बारिशें बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो सब देखते हैं कि अगर वो हार्डी प्लांट है वो सस्टेन कर सकता है, और हमने ऐसे पौधों को सिलेक्ट करना है। अगर मैं बिल्कुल एक सकुलेंट प्लांट सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जो कि किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर उसका फायदा भी हमें उल्टा नुकसान है कि हमारे पैसे भी जाया हो रहे हैं और हमारा जो है वक्त भी जाया हो रहा है, रिसोर्सेज खराब हो रही है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे एक या दो पौधे लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो आप इस सोच को किस तरीके से देखते हैं और छोटी शुरुआत की असल अहमियत क्या है, ये जरा हमारे सुनने वालों को बताइएगा।
1: जी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरे एक या दो मतलब प्लांट्स लगाने से कि क्या फर्क पड़ सकता है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जनरल सवाल है। मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि दो पॉट से पूरे शहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा या उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा। लेकिन हम जो है हॉर्टिकल्चर में देखते हैं कि लोकेशन हमारे पास बहुत मैटर करती है। अगर वही दो प्लांट्स किसी कमरे के डार्क कॉर्नर में रखें तो एनवायरमेंट इफेक्ट लिमिटेड होगा, लेकिन अगर वही सूटेबल लार्ज सोलियज यानी बड़े पत्तों वाले पौधे जैसे हमारे पास रबर प्लांट्स हैं जो डेकोरेशन इनडोर प्लांट्स जिनको हम कहते हैं, वो हम ऐसी जगह पर बैल्कनी में रख लें या विंडो के आसपास रख लें, तो और इसके अलावा जो है बैल्कनी में अगर बड़ा कंटेनर रख के कोई बड़ा जो है वो प्लास्टिक का कोई ड्रम टाइप चीज रख के, आजकल के बैग भी मिल जाते हैं बहुत अच्छे, उनमें जो है अगर हम एक क्लाइंबर यानी एक बेल लगा लें तो वो ना सिर्फ हमारे जो है घर को खूबसूरत बनाएगी बल्कि वो अंदर के इन्वायरमेंट को टेम्परेचर को कम बहुत इफेक्ट करती है, बहुत कम करती है। अक्सर आपने पोस्ट भी देखी होगी डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे कि लोगों ने शेयर किया होती है कि चलते रोड पे या बहुत जहां पे खुशहाली है या रोड है या गली है जहां पे बिल्कुल कोई दरख्त नहीं है वहां का टेम्परेचर हाई होता है जबकि एक दरख्त के नीचे टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वही क्लाइंबर जो है वो हमारे रूम का टेम्परेचर बहुत अच्छा बना देती है। इसी तरह जो है और प्लांट्स हैं तो ना सिर्फ हमें जो है शेड दे रहे हैं या खूबसूरती दे रहे हैं बल्कि वो हमारे अंदर का जो इंसान है उसको भी खुश रखते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
0: ओके जी, अच्छा अगर किसी के पास लॉन ना हो या कोई ऐसी बड़ी जगह ना हो जहां पे पौधे लगाए जा सकते हो, तो क्या इंडोर पौधे लगाए जा सकते हैं जैसे बालकनी में लगा लिए, छोटे गमले, छत पर पौधे या दुकान के बाहर, तो इस चीज को जरा सा बताइएगा कि किस तरीके से हम इंडोर प्लांटिंग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन हर जगह का जैसे आपने मुख्तलिफ जगह का बताया तो हर जगह का पर्पज हमें अलग से समझना होगा। अब इंडोर प्लांट्स में हम अगर ये बात करें कि कुछ हमारे पास इंडोर प्लांट्स हैं और हमें जो है इतनी सख्त गर्मी में किसी को अगर एयर कंडीशनर या एयर प्योरीफायर की जरूरत है तो ये पौधे तो उनको रिप्लेस नहीं कर सकेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमारे छोटे पौधे हैं, बालकनी में है या रूम में है या किसी ऑफिस में है, लेकिन वो जो है इंडोर प्लांट्स हमारे एक विजुअल कंफर्ट और इंसान की नेचर के साथ बहुत कनेक्ट करते हैं और इनको बहुत अच्छा बना देते हैं। फिर जैसे मैंने पहले भी बात की कि माइक्रो क्लाइमेट जो हमारे बैल्कनी का है या कोर्ट यार्ड का है या हमारे पास टेरेस का है तो ये भी जो है वो इंटरेस्टिंग लोकेशन हमें देता है और इसी से जो है बहुत खूबसूरत जो है वो प्लांटिंग हो सकती है और इससे जो है बहुत अच्छे पौधे उग सकते हैं। जैसे हमने आजकल महंगाई है और बाकी चीजों पे भी हम देखते हैं तो हम घर की बैल्कनी में या घर का छोटा सा जो कोर्ट यार्ड है या लॉन है उसमें हम अपनी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। उससे न सिर्फ हमारा जो है एक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी, हमें जो है फिर डिफरेंट सब्जियां भी मिल सकती हैं, छोटे फ्रूट्स भी मिल सकते हैं और इससे जो है फिर वही बात आ जाती है कि आपका पर्पज क्या है प्लांट लगाने का और उससे हमें फिर जो है सिलेक्शन करनी पड़ती है और हर क्लाइमेट के लिए या हर इलाके के लिए अलग प्लांट्स जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं। अगर आपने इंडोर लगाने हैं तो जैसे रबड़ प्लांट है या डिफरेंट टाइप के कैक्टस प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छा एक तो इन्वायरमेंट बना देते हैं और दूसरा फिर बैल्कनी में अगर आप आए तो हम कोई क्रीपर लगा सकते हैं, कोई बेल लगा सकते हैं, तो ये चीजें इन्वायरमेंट को बहुत इफेक्ट करती हैं। और फिर एक दो पौधे से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरा मोहल्लेदार है या कोई शॉप पे आने वाला बंदा है वो देखता है, मेरे ऑफिस में आने वाला बंदा अगर वो देखता है उसको खूबसूरत लगता है तो उसके अंदर एक सोच डेवलप हो सकती है कि मैं भी लगाऊं और इस तरह करते करते वही बात के कतरे कतरे से जो है वो दरिया बनता है तो लोग इकट्ठे करते जाएंगे तो माइक्रो क्लाइमेट जुड़ते जाएंगे तो एक ओवरऑल क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है।
0: बिल्कुल जी, अच्छा टाइम भी बहुत लिमिटेड है और लास्ट में हमारे सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सोच के साथ कि एक पौधा एक सोच और एक बेहतर पाकिस्तान।
1: जी बिल्कुल, मैं एक यही पैगाम देना चाहूंगा कि एक पौधा एक सोच एक बेहतर पाकिस्तान का मतलब मेरे लिए यही है कि हरियाली को सिर्फ डेकोरेशन पे न देखें, आप अपने
2: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। खूबसूरती का असल राज सिर्फ बी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अरे न खुश और बेरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आओ पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहन में आहिन चार रंग की खूबियों ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उनकी नमी के लॉक करे ऐ चामरन की खूबियों जल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम बीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उनका जरूरत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसे हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
5: खु़शख़बरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थांव खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
6: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
10: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-32-41-230।
11: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतन ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुन जो इलाज कंदो आहे।
12: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
13: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
14: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
15: सुनते रहो GFM 90.4।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का. और आप सुन रहे हैं एक ब्यूटीफुल सॉन्ग, और सॉन्ग के साथ साथ हम लेंगे आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस जिन लोगों ने कमेंट कर दिए हैं. मैं देख रही हूँ शिकायतों वाले कमेंट सबके देख रही हूँ. अच्छा, स्मार्ट किशोर कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, मैं वहाँ लाइव पे ढूंढ रहा था आपको, यहाँ आप छुप कर शो कर रही हैं. हाँ जी, मैं छुप छुप के शो कर रही हूँ. और कहते हैं कि वो शो खत्म नहीं हुआ, असल में वेनसडे को उसका ऑफ होता है, और वेनसडे को हमारा एज इट इज जैसे जिंदगी गुजार है प्रोग्राम हुआ करता था वो होता है. ठीक है.

0: अच्छा आज का टंग ट्विस्टर है कच्चे खीरे की कच्ची ककड़ी, ये कहना है ठीक है, कच्चे खीरे की कच्ची ककड़ी, कच्चे खीरे की कच्ची ककड़ी इसको कह के दिखाएंगे और जो ज्यादा से ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन करेगा हमारे सेगमेंट। तो ठीक है जी, 15 मिनट है ऑलमोस्ट मेरे पास, ठीक है जी, तो 15 मिनट के अंदर अंदर जो है हम आप लोगों की लाइव कॉल्स ले लेंगे और ये बोलते बोलते हमारे पास 13 मिनट रह चुके हैं। खैर हम चलेंगे आगे और गाना एक और प्ले करूं, इसी गाने के साथ हम कॉल्स लेना शुरू करें 03000113488, इसके ऊपर कॉल करेंगे आप लोग। कच्ची खीरे की कच्ची ककड़ी ये कहना है, कॉलर लाइन पे मौजूद है। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: शिकारपुर से जमालदीन भाई।
0: जमालदीन भाई कैसे, ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा, प्रोग्राम सुन रहे हैं, टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे? तो बोले कली कच्ची नहीं, कच्ची कच्ची ककड़ी, कली कच्ची नहीं, कच्ची ककड़ी, कच्ची खीरे की कच्ची ककड़ी,
1: कच्चे खीरे की कच्ची।
0: ओके ओके, जमालदीन भाई भाई बात कर रहे हैं ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: ओके, और कुछ कहेंगे?
1: माशाल्लाह बच्चों के आप लग रहा है।
0: थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा ख्याल रखे हैं।
1: धन्यवाद।

मेरे सॉन्ग और सॉन्ग के साथ साथ कॉलर्स भी मेरे साथ होंगे मौजूद. अच्छा, इसके अलावा स्मार किशोर का कमेंट आया है, जो सॉन्ग सरदर्द ने गाया ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था और सिंगर भी, और मैं कल कोशिश करूंगा यही सॉन्ग गाऊं अगर कॉल लग गई तो. चले, ठीक हो गया, डन हो गया.

अच्छा आज का तंग टिश किसने अच्छा अच्छा बोला है, वो बोला है जमाल दीन भयो ने और आसिफ अली चाचा ने, काफी अच्छा टंग टिश बोल दिया और कह गए। और इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है और मैं जल्दी से चली जाऊंगी, सो इंशाल्लाह मेरी आपसे चिट चैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजी। सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है। लुक सिंपल बट थिंक हाई। सो दिस इज मी आरजी रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज़।

0: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: शहबाज शरीफ जो वफाकी वजीर अमीर मकाम सां मुलाकात दौरान ॻाल्हियो. वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ऐं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जी सूरत हाल ते वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग ॾिनी. वज़ीर आज़म जी कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान में अवामी भलाई वारा क़दम जारी रखण जी हिदायत. सिक्योरिटी फोर्सिस जूं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा ऐं बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी. 18 दहशतगर्द मारिजी विया. सिक्योरिटी ज़रियुनि मूजिबि KPK जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में ख़ारिजी दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो. 13 दहशतगर्द जहनम भेड़ा कया विया. बलोचिस्तान जे इलाइक़े मस्तोंग में कार्रवाई दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया. बारूदी मवाद ऐं हथियार हथ कयो वियो आहे. सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां कामयाब ऑपरेशन ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई. जमनी हुसैन पारां रियाज़ जे किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐं अबाज जे एयरपोर्ट खे मिज़ाइल ज़रिए निशानो बणाइण जी दावा. हुसी विड़ाकनि मूजिब सऊदी जे कमीस मुश्तेक बे एयर बेस खे निशानो बणायो आहे. सऊदी अरब हुसैन जे हमलनि जी तसदीक न कई. रियाज़ जे ॾखण में मिज़ाइल खे नाकारा बणाइण जी दावा. वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जी सदारत हेठि सऊदी काबीना जो इजलास. यमन जे आइनी हुकूमत सां सहकार जारी रखण वारे अज़म जो वर्जाओ. काबीना इजलास में ख़िते समेत आर्मी सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो वियो. मके दिफ़ाई मुआहिदे जी कमेटी इजलास जे नतीजनि जी साराह. ख़िते में मसइलनि जे हल लाइ सफ़ारतकारीअ ते ज़ोर ॾिनो वियो. हिन वक़्त ख़बर न आहे ईरानी हुकूमत ऐं मुल्क जो इंतज़ाम केरु हलाए रहियो आहे. ईरान जे बे नंबर क़यादत बि ख़तम थी चुकी आहे. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जी सूरतहाल इंतिहाई संगीन आहे. ख़बर न आहे त ईरान खे केरु हलाए रहियो आहे. अमरीकी नायब सदर जेडी वेन चयो आहे त वॉशिंगटन ईरानी सदर ऐं परॾेही वज़ीर सां राब्ते में आहे. जंग जे ख़ात्मे लाइ यूरेनियम जो रिचाउ घटाइण वारा वाइदा काफ़ी न आहिनि. तहरान खे यूरेनियम जे रिचाउ में वाज़े घटिताई करणी पवंदी.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
3: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
5: सुपर वाइट।
6: जेकर तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उगरायूं, भुख न लॻण या बदहज़मी जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326-36-36-879 and 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ्त में डिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
9: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
10: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
11: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
10: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
11: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
10: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरत عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
5: یاد رکھندا ڈاکٹر اتیگا سعید ہر جمعے کے ڈیں مریضن جو مفت علاج کندی
11: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 247-3141-200
1: خوشخبری اواں جے پنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانہ شام 4 وگے کھا رات 10 وگے ائی ہر آچر تے صبح 10 وگے کھا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے یاد رکھندا دائمی بخار نزل و زکام بدن میں سور بے چینی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے
12: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل کے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-3495-244
10: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول

0: नव का साढ़ा छह वगे शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लैंड लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125252786
2: जी हाँ 2315525786
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर किस तरह से अवेलेबल करा सकते हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो अवेलेबल कराना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जबकि ऐसा वाला सीन होता है कि भाई आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाएं और वहां से नाम लेकर तलब करें। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो और डी स्किन का फेस वॉश हो, आपकी खूबसूरती हो और क्या कहने हो। अच्छा, उन्हें के अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसे बहुत सारी आंटियां, अमियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्र आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के समाये लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के समाये लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब एक बहुत ही ब्यूटीफुल से कसीदे के साथ। तो बहुत प्यारा सा कसीदा हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सुन लेते हैं। उन्हें खा पोई जी वापस तमाम से मुखातिब थियूं था तो तमाम के बुधाई था प्रोग्राम के अंदर छा थियण वारो आए आई प्रोग्राम में अंदर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो केतरियूं गालियूं आहिनि जेके तव्हां जे लाइ लाज़मी आहिनि ऐं ज़रूरी आहिनि। सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल तव्हां कंदा रहो, खूबसूरत थींदा रहो। और जनाब प्रोग्राम है वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: जी आप सुन रहे हैं वाइटेशन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स है जिनके बारे में आप लोगों को बताया जाता है, और क्यों बताया जाता है ये चीज भी बड़ी मायने रख रही होती है। अगर आप अपने खूबसूरती के बारे में जरा थोड़ा सा परेशान बैठे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट हमें लगाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हमारी स्किन के मुताबिक ही है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताती हूँ, ताकि आप लोगों के चेहरे पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, गैर जरूरी चीजें जो आपके चेहरे को इरिटेट कर रही होती हैं, आपको जरा परेशान कर देती हैं, तो उन तमाम चीजों से आप लोगों को रिलीफ दिला सके और आप लोगों को बता सके कि भाई यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कितना जबरदस्त रोल होने वाला है जब आप अपनी जिंदगी के अंदर एड करेंगे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है। अगर आप भी चाहते हैं इस्तेमाल करना, तो जल्दी से जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए और परचेज करते जाइए। उनके अलावा आज जो प्रोग्राम जो टॉपिक थे हमारा है, यानी कि आज के प्रोग्राम का जो सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है वो क्या होने वाला है, तो आज ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आ जाता ना कभी कभी, जैसे बिल्कुल वही वाला ख्याल मुझे आया, मैंने सोचा कि भाई क्यों ना आप लोगों से पूछा जाए कि आप मुझे बताएं आज कि ये जो मैं आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ, बहुत ज्यादा वाली बातें रोज रोज बताती हूँ, डेली डेली बताती हूँ, तो आज आप मुझे जरा ये बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ना ये जो विटामिन ई बीट्स है और माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन है, इसका क्या रोल है। हाँ जी, आप लोगों ने इतना ज्यादा सुन लिया है मुझसे, आज जरा आप लोग मुझे बताएं कि ये जो विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं, इनका क्या रोल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर, ये आप मुझे बताने वाले हो। जिन लोगों ने डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज किया है ना, वो तो मुझे इसे फट से बता देंगे कि भाई उनको पता है कि जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं तो आपको रिजल्ट कैसे शानदार से मिलते हैं। तो आज आप लोगों की बारी है, सारे लोग मुझे बताइए कि विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो हैं इनकी क्या क्वालिटीज है, और ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। इनके अलावा अगर सांसने प्रोग्राम जो है चाहिए था, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा, वहाँ पर आइए, आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज्यादा किया करें। शेयर करने से ऐसा होता है, शेयरिंग इज केयरिंग तो होती ही होती है, लेकिन शेयर करने से हमारी जो पोस्ट है ना वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाती है और हम बहुत सारे लोगों को बता पाते हैं कि वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज आप सब लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड जो फार्मूला होता है ना उसके अंदर वो तमाम चीजें ऐड की जाती हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं भाई हमारी खूबसूरती सिर्फ बढ़नी चाहिए, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के फार्मूले की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को इस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। और बिल्कुल आज मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछ लिया है वो उसका जवाब आप मुझे बताएंगे कि ये जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं, इसका क्या रोल है, इसका क्या काम है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर, आप मुझे बताइए जल्दी जल्दी से। और हमारे प्रोग्राम का ऐसे बनते जाइए, आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं, तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करना, ये आप लोगों का काम होता है। अच्छा, जीन अली हमें ज्वाइन कर चुके, कहते हैं कि जो हमारे हिस्से का है वो कभी ना कभी हमारे पास खुद ही आ जाएगा। बिल्कुल आपने सही लिखा है, और लिखते हैं कि कोई भी तकलीफ हमेशा नहीं रहती, हम हाँ जी ये अल्लाह का वादा है, तुम बस सब्र रखो और अच्छे वक्त का इंतजार करो। बिल्कुल आपने सही लिखा है जेन। और जेन आप मुझे बताएं, आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर ली या फिर अभी तक आप सिर्फ खाली प्रोग्राम सुन रहे हैं। भाई आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करनी है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी आपको मिल रहा है। अच्छा, हमारे साथी नजीर खोसू भाई हमें बलूचिस्तान से सुन रहे हैं, लिखते हैं कि हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। ओके जी, जबरदस्त हो गया। यासीन खंडा में सुन रहे हैं, कहते हैं हाय, कैसी है तबियत आपकी रोजाना की तरह, आज भी आपका शो वेरी वेरी नाइस ब्यूटीफुल है। थैंक यू वेरी मच यासीन खंड। अहद जरवार में सुन रहे हैं, अहद भाई वालेकुम अस्सलाम के साथ आपको वेलकम कहते हैं। तारिक भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम सलाम तारिक भाई। और तारिक भाई लिखते हैं कि अदी हाँ जी, अदी मैं आज अहमद भाई के साथ हूँ, अहमद ट्रेडर्स तारिक रोड जेकब आबाद में इनकी शॉप है। हमारे बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आज हम डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान आए हुए हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करवाने आए हैं। क्या बात है जी, अब तो बलूचिस्तान के लोग भी रेडी हो जाए क्योंकि आप लोगों के लिए भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा दिया जा रहा है। तो जितने भी बलूचिस्तान के लोग हमें सुन रहे हैं वो सारे लोग भी भाई जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश परचेज करते जाइए। और जी अब्दुल जी केसर हमारे साथ है। अब्दुल जी केसर, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है। जवार मोहम्मद बचल शंबानी भाई हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, वेलकम हो गया। रिजवान अली हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। अल्लाह दिना भाई कश्मीर से हमें सुन रहे हैं, वेलकम कहते हैं भाई को। और हमारे साथ है गुड आफ्टरनून, हेलो सिद्रा जी, हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची। ओके जी, कराची वालों को भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सहूलत हमने मयसर कर ली है। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करना चाहते हैं तो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से परचेज कीजिए और नाम लेकर तलब कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको नाम आना चाहिए, वैसे तो कुछ लोगों को नाम नहीं आता अभी तक, लेकिन आपको यो इतना बताती हूँ ना तो वो इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को नाम याद हो जाए और आप अगर मार्केट चले जाएं तो आप लोग सही से नाम लेकर सही वाला प्रोडक्ट परचेज कर सके। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश, नाम ही काफी है। अच्छा, रिजवान लिखते हैं, मुझे पसंद है इत्र की खुशबू पर उसकी गली की क्या बात है तो सुरूरे कोयल भी अच्छा पर उसकी निदा की क्या बात है। दुनिया में है बहुत समंदर गहरे गहरे पर उनकी आंखों की क्या बात है तो चांद भी कितना हसीन पर तेरे हुस्न की क्या बात है। दुनिया में है रेशम कितने नरम नरम पर तेरी कलाई की क्या बात है। क्या बात है जी, क्या बात है। दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ, आप बताओ स्वीटी कैसी हो। अबू हनी पल बलोची भाई में सुन रहे हैं, गुड आफ्टरनून। नजर मोहम्मद भट्टी भाई, हेलो, कहाँ से सुन रहे हैं जी? मटियारी से सुन रहे हैं मुझे लग रहा है। और मास्टर मजरूर का गाना सुनना चाहते, पहले मुझे ये बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करी या नहीं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करो फिर आप लोगों की फरमाइशें लगा दूंगी। और वासिफ भाई हमें सुन रहे हैं, कहते मुझे प्यारी भेण सलाम, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है तामदा की आयो। अली रजा लगारी हमें सुन रहे हैं जी, सॉन्ग जी फरमाइश कया सोने भा, डेडिकेशन तवाजी बनी थी। अजहर लगारी, आकिब लगारी, अनवर लगारी, अब्बास लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा चालपुर, इमाम बख्श खोखर, अली रजा भाई भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी रहे हो आहे सो अवहां भी लगायो जिन जिन अन्या ताई कोन वर्ती आहे। यासिन खान कहते कि मैं भी दो या तीन दिन में छुट्टी पर जाऊंगा अपने शहर लख रोड में, तो आप वहां से डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करेंगे या फिर आप यहां से लेकर जाएंगे। और हमारे साथी जी महर इरफान सियाल साहब कहते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, वी आर लिसनिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम मुल्तान। क्या बात है सर, वेलकम हो गया। और मुलाजिम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। और दर्दी दिल लिखती हैं कि गम हमेशा
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ, आवाज की डोर से बंधा हुआ।
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज़े सारे।
4: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अरे न खुश और बीरोनो की स्किन हर उन्हें जो लाइक था डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहने आहिन चार रंग की खूबियों ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे इन जी नमी के लॉक करे ऐं चामरन जी खूबी जिंद मां फाइन लाइन ऐं जीरन के घट कर ऐं रिकस के घट करे सिर्फ ट्रिम इवन में जिंद के बढ़ाए नरम मुलायम ऐं ड्राई उन सां गॾु गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट रॉयस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
6: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ टे ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबाजे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
7: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध की मेहमान नवाज धरती
1: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम 88 की आवाज,
0: जीए की आवाज।
2: ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, माथिली, नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताया जाता है, डी स्किन फेस वॉश के बारे में आप लोगों को बताया जाता है, ताकि आप लोगों को भी तो पता चले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, आप लोगों के चेहरे के लिए क्यों और कैसे जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे जरूर बताया करें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज जो है ना आप लोगों के चेहरे के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद साबित हो चुका है। अगर आप मर्द हज़रात हैं, ख़वातीन हैं, सब कोई इस्तेमाल कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जब बात आती है तो जनाब ऐसा तो आप लोग सोच ही रहे होंगे कि भाई खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजरअंदाज कर दिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। आजकल के दौर में देखा जाए तो हर कोई जो है वो खूबसूरती के चक्करों में पड़ा हुआ है और उनको चाहिए होता है कि भाई बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हमें बताए जाए जो हम लगाएं, बस हम ऐसे जादू की छड़ी फिर जाए और बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाए। और जब आप बहुत सारे केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर लेती है अपनी स्किन के ऊपर और जब लगाने के बाद आपके चेहरे पर निखार तो नहीं आता लेकिन आपके चेहरे की स्किन जो ना वो बिखर जरूर जाती है, आपके चेहरे पर बहुत सारे इस तरह की चीजें आ जाती है जो कि भाई देखी नहीं जाती। अगर आप इन तमाम चीजों से तंग आ चुके हैं, बेजार हो चुके हैं, आपका यही एक कहना है कि भाई सारे प्रोडक्ट्स तो ऐसे ही होते हैं, तो मेरी जान ऐसा कोई सी नहीं है। जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो यूज है ना आप लोगों की खूबसूरती के लिए इस तरह से भी जरूरी है, इस तरह से भी काम करता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो कि आप लोगों की स्किन के लिए फार्मूले ईजाद करते हैं, फार्मूले बनाते हैं। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हो, ये मेडिकेटेड फार्मूला है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोग तसल्ली से और आराम से लगाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी, जैसे कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है मेडिकेटेड फार्मूला तो है ये आप जानते हैं, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूला है क्या ये बात आप जानते हैं? बिल्कुल, जो लोग रेगुलर मुझे सुनते हैं वो लाजमी जानते होंगे, बाकी जो लोग मुझे पहली मरतबा सुन रहे होंगे उनके लिए नई बात होगी। तो आप जो लोग मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं आप जरा सुकून से सुनिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ ये एक 2-in-1 फार्मूला भी है। और 2-in-1 फार्मूले का क्या काम होता है भाई, तो 2-in-1 जो फार्मूला होता है ना वो आप लोगों की स्किन के लिए यानी कि ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी को आसान बना देता है। वो कैसे, जब आप मार्केट जाते हैं या फिर सैलून वगैरह जाते हैं बहुत महंगे महंगे फेशियल्स कराते हैं तो आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम की तरह मिल रही है, ये एक नाइट क्रीम है, आप लोगों का टाइम बच जाता है, बस आप नाइट क्रीम जो है अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, आप लोगों को जो रिजल्ट्स मिलते हैं मेन पॉइंट जो है शो स्टॉपर अगर इसकी बात करें तो वो भाई आप लोगों को रिजल्ट्स मिलने वाले हैं फेशियल वाले। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं तो ये बात आप याद रखिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो फेशियल वाले रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, क्या बात है भाई साहब। तो ये जो आप घंटों घंटों बैठकर अपने लिए सैलून्स में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, पैसे भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं आप लोगों के, आप ऐसा काम कीजिए मुनासिब सी कीमतों के अंदर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कर आइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी बात है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये ऑल स्किन के ऊपर सूट करती है, यानी कि अगर आपकी स्किन ऑयली हो, सेंसिटिव हो, डार्क हो या फिर ऐसा है कि बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन टाइप स्किन हो जाती है, आपकी सर्दियों में अलग हो जाती है, गर्मियों में अलग हो जाती है, तो हर स्किन के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल सूटेबल है। और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप हर मौसम में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा वाला कोई सी नहीं है कि भाई सर्दियां आ रही है तो सर्दियों में लगाएंगे, आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं, ये आप लोगों की स्किन ना प्रोटेक्शन भी करेगी और आप लोगों के चेहरे पर खूबसूरती भी लाएगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगा रहे ही नहीं मुझे बताइए, और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने की ये भी प्लस पॉइंट है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से बड़े परफेक्ट से रिजल्ट मिल जाते हैं। और सिर्फ दो रातों में अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हैं बिना किसी केमिकल को लगाए तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो यूज होगा ना आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप भी ट्राई करके देखिए और खूबसूरती की दुनिया में आप भी कदम रखिए। और आप इस्तेमाल कर रहे ही नहीं मुझे लाजमी बताया करें, क्योंकि खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में शामिल करना होगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती को نرم اور ملائم بنا دیتی ہے. خوبصورت سا احساس آپ کی اسکن کے اندر آ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اب تو زندگی پرفیکٹ ہو چکی ہے. اگر آپ کی شادیاں ہو رہی ہیں تب تو بھائی پرفیکٹ ہے کہ آپ لازمی لگائیے گا. یہ جو آپ طرح طرح کی بلیچنگ لگاتے ہیں, فیشلز لگاتے ہیں, ان سے ذرا گریز کیجیے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجیے, کیونکہ دو راتوں کے استعمال کے فوراً بعد آپ کو مل جائے گا پرفیکٹ والا حسن, پرفیکٹ والی خوبصورتی, اور آپ بن جائیں گے حسین سے بھی حسین. اچھا جی, تو میں نے آج جو ہے نا سوال آپ لوگوں سے جو پوچھا ہے وہ تو بالکل آپ لوگوں سے پوچھیں گے, لیکن آج جو لوگ مجھے سن رہے ہیں جن کو نہیں پتا کہ بھائی اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز کے اوپر ڈی اسکن بیوٹی کریم کو اویلیبل کرانا چاہیں تو کیسے اویلیبل کرا سکتے, کیونکہ آپ کے قریبی جنرل سٹورز کے اندر بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کو ملنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو نمبر بتاؤں گی, اس نمبر کے اوپر رابطہ کیجیے گا, اور نمبر کیا ہونے والا ہے نوٹ کیجیے. اوکے جی, تو پہلا نمبر ہے 03-12-50-25-907-12 پنجاہ پنجویہ 970, اور بیو نمبر آہے 03-27-38-43-09 73-84-309. ہی نمبر سائن جے کہ تمہاں ڈائل کری پانچے قریبی جنرل سٹور سے ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن جو فیس واش اویلیبل کرائے سکو تھا. سو بابا دیر شاہ جی ہانی تمہاں نمبر سے رابطہ کیو, کال کیو یا وری میسج کیو, طارق بھائی ویٹو آئے تمہاں کے رسپانس لنگ دو, طارق بھائی کے بدھائیو حال حوال دیو. ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہاں پرچیز کرن چاہیو تھا پر تمہاں سے ایریا میں کون ملی رہی آئے, تو اویلیبل کرائیندا رہو اور خوبصورت تھیندا رہو. اوکے جی, سو میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیا کہ آپ مجھے بتائیں یہ جو آپ ڈیلی بیسس پر سن رہے ہوتے ہیں ہمارا پروگرام, آپ لوگوں کو تو مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی ساری چیزیں یاد ہوگی, ساری باتیں یاد ہو چکی ہوں گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ بھائی وائٹامن ای بیٹس اور مائکرو بیٹس ایڈ کیے گئے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر, تو مجھے بتائیں کہ وائٹامن ای بیٹس اور مائکرو بیٹس کا کیا کام ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر, کیا یعنی کہ اس کے فائدے آپ لوگوں کو ملتے ہیں جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کرتے ہیں جس کے اندر وائٹامن ای بیٹس اور مائکرو بیٹس کی ایڈیشن رکھی گئی ہے. تو یہ آج آپ مجھے بتائیے 8881, اور فیس بک پر آپ مجھے جوائن کرتے جائیے, آپ کے میسجز بالکل مجھے ملتے جا رہے ہیں, تو میسجز کی جانب آیا جائے. ہاں جی بالکل, یہاں پر آپ ہمارے ساتھ ہیں, تو ایک منٹ ذرا.

हाँ जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। पोस्ट को लाइक और शेयर जो लोग करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत हो जाएंगे। हाँ जी, जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों को बताना है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाना है। यासिन खान भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, और एहसन अरवानी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम मदद कहते हैं। ओ माय फेवरेट आरजी मैडम मुस्कान जी, कैसी आप, वेलकम कहते हैं आपको दिल से, आपको भी दिल से वेलकम कहते हैं जी, क्या याद करेंगे। और मीर मुमताज अली जदोई भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, ये शो इज वेरी वेरी नाइस। गोट आगा खान जदोई लाड़काना से आप हमारे साथ मौजूद है। मुमताज अली जतोई भाई आपको भी खुश आमदीद। किशोर भाई हमारे साथ कहते हैं सलाम अदा, किशोर हाजरा तवंजी महफिल में, किशोर भाई के चौथा भली करी आया किशोर भाई। अबासी भाई लिखते हैं कि सिद्रा योर स्माइल इज ब्यूटीफुल, थैंक यू अबासी भाई। और हमारे साथ हैं जी निजाम अली भट्टी, निजाम मोहम्मद भट्टी भाई वालेकुम असलम फ्रॉम मटियारी से आप हमारा शो सुन रहे हैं, कहते तमाम बेहतरीन शो है, जबरदस्त अब्दुल रऊफ मक्सी का गाना लगाइएगा। जी जी बिल्कुल, अब्दुल रऊफ मक्सी का गाना आपको में सुनाएंगे। वहीं भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम मदद, अदी ठीक है, तहां बुधा की आयो, मजे में आयो। ऐसन कहते हैं टाइम का तो पता ही नहीं चला एक, हाँ भाई क्या मतलब आपके, यहाँ अभी सूरज निकला है। हमारे यहाँ तो दोपहर हो चुकी है। उनका अलावा फहीम भाई तमाम लिंक शेयर किया, ओके तमाम जो गानों अलाइंदासी। और अलीशा हमारे साथ ही, प्यारी अलीशा क्या कहती हैं, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, क्या बात है जी। और मुझे बताएं अलीशा, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर चुकी हैं, आपको कैसा रिजल्ट मिला है। और लिखती है कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, और आपने नूरजहां और अच्छा ये शायरी लिखी है, मैं कहा नूरजहां का गाना सुनना चाहती हैं आपको। चलिए आपकी शायरियां बिल्कुल शामिल प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन मेरे पास गाने भी है तो साथ साथ हम जरा गाने भी एंजॉय करते रहें। और आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक करते नहीं है भाई पोस्ट को, इतने कंजूसियां आखिर किस बात की, क्या मतलब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी नहीं लगा रहे हैं, इतनी कंजूसियां किस बात की, इतना पैसा बचाए छा तो बगला ठहरेंगा न बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी जो, खूबसूरत रहो आई खुश रहो।

लोगों से पूछ लिया है कि मुझे बताएं ये जो जीस्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं, तो इसका क्या कमाल है जनाब जीस्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर? आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे जब आप जीस्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की भी एडिशन रखी गई है ना, तो इसका क्या रोल होने वाला है ये आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं तो डेली आप लोगों को बताती हूँ, आज आपकी बारी है कि आप भी मुझे बताइए। मुझे पता चले कि मेरे जो लिसनर्स हैं वो कितना गौर से मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, या फिर ऐसा वाला सीन है कि एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते अच्छा यहाँ पर नजर मोहम्मद भट्टी भाई कहते हैं कि जी अदी लगायूं था डी स्किन ब्यूटी क्रीम छो त मात चवां थो जेके भी ॿुधंदड़ आहिनि उहे भी इस्तेमाल कनि पप्पू थी वेंदा। अल्लाह वाह जी ॻाल्हि कई अथव, ॿुधो था न तव्हां सभु लॻाए बाबा नज़र मोहम्मद भट्टी जीअं तव्हां बि पप्पू थी वेंदा। और अलीशा कहती है कि नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा आपने तो गाने लिख दिए जी हमारी पोस्ट पर कहती मेरे लिए हर खुशी का मतलब आपका साथ होना है। बहुत शुक्रिया अलीशा प्यारी स्वीटी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रही है नहीं ये भी साथ साथ बताते रहिए। और वास्तव भाई लिखते हैं कि तेरी सादगी तेरी आजजी तेरी हर एक अदा कमाल है, मुझे फख्र है मुझे नाज है बस मेरा यार बेमिसाल है। क्या बात है जी क्या बात है। इकबाल भाई हमें सुन रहे हैं सोनो खान लाशारी मीरपुर खास से सुन रहे हैं बाजी सिद्रा नाइस योर शो थैंक यू अच्छा हसनैन रजा हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम हसनैन रजा क्या कहते हैं क्या कहते हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आपका प्रोग्राम थारो शाह से सुन रहे हैं। ओके जी थारो शाह में आपको पता है ना कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी थारो शाह में अवेलेबल करा रखी है भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो जितने भी थारो शाह के लिसनर्स हैं वो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से परचेज कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, ना सिर्फ आप खूबसूरत हो जाती है बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहती है वो ऐसे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, तो कोई टेंशन नहीं, कोई आपके चेहरे पर चिक चिक नहीं होगी, ऐसा जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते ना तो आपको ऐसे महसूस होता है कि भाई इसको बस हटा देना चाहिए चेहरे से, तो ऐसा कोई सी नहीं होगा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत एक क्रीमी सा फार्मूला है और बहुत एक अच्छा सा फार्मूला है और ये 2-in-1 फार्मूला है, तो ट्राई करके देखिए यकीनन आपको भी मजे आ जाएंगे। अच्छा ये हमारे साथ है हेलो विद आरजे सिद्रा मुस्कान जी, आप मुझे मेरी फरमाइश का गाना नहीं सुनाती हो क्यों? आज आपका गाना सुनेंगे, आप अपनी सीट पर बस बने रहिएगा। अब्दुल गफार भाई हमारे साथ मौजूद है, सलाम खुलूस वालेकुम अस्सलाम, मेलसी से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वेलकम कहते हैं आपको भी, और अब्दुल गफार भाई थैंक यू। किशोर भाई कहते हैं कि टॉपिक अदा असा सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पढ़ियो, सच में माइक्रोसॉफ्ट पढ़ियो तो चलो मुझे बुधाई वो चाहूंगा

आसिम खान कहते हैं कि आपको बताया था ना, मैं डी स्किन ब्यूरो क्रीम की दो डब्बी खत्म कर चुका हूँ। बहुत वेरी नाइस रिजल्ट मिला है, बहुत ब्यूटीफुल खुशबू भी है। अभी तीसरी डब्बी लेकर आया हूँ डी स्किन ब्यूरो क्रीम की। क्या बात है जी, बढ़िया हो गया ये तो। और कहते कि बस शमन जी गाने जी पा रहे थे। हाँ शमन जो गानों वाला था। हसनैन कहते कि मेरे पास डी स्किन ब्यूरो क्रीम अवेलेबल है। क्या बात है हसनैन रजा, आपका जनरल स्टोर है या फिर आप परचेज करके आए हैं, बताएं तो। और जी हमारे साथ है चेतन कुमार। चेतन कुमार कहते हाय, आई एम चेतन कुमार, मिठी थर पार्कर से आप हमें सुन रहे हैं। वाजीवा, क्या खूबसूरत और 100% तेज आवाज है आपकी जी, फुल एनर्जेटिक। आप बताएं कैसे ठीक ठाक है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है वहाँ पर। यार परदेसी भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे सदर, आपके क्या हाल चाल है, आपका काफी दिन बाद शो सुना है, अच्छा लगा हमारी हाजिरी कबूल करना। ओके जी। चेतन भाई कहते हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह, थैंक यू चेतन भाई। अबू अनीफ लिखते हैं कि क्या पता जन्नत में हम भी ना मिले, हम यहाँ आजाद का मसला है, वहाँ दर्जात का मसला हो सकता है। क्या बात है, नसीबो रेड का गाना सुनना चाहते सुनाते हैं आपको। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं कि आपके टॉपिक का आंसर तो आप खुद बार बार बता रही हैं डी स्किन ब्यूरो क्रीम की पब्लिसिटी में, तो आप बताएं ना कि असल पॉइंट क्या है, मैं आपको पॉइंट पर लाना चाहती हूँ। समझ आइए, तो वो कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। क्या मतलब, आपको वो इशारा अभी तक नहीं मिला? अरे भाई मुझे बताइए, ये जो वाइटामिन बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं, इसका क्या काम है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर, क्या रोल प्ले कर रहे हैं वाइटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स? मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आपने जो इतने दिनों से मेरा प्रोग्राम सुना है, तो कुछ सुना भी है, कुछ पल्ले भी पड़ा है, या एवं सिर्फ गाना लगा दो वाला सीन है?

0: प्यार को शेयर करते रहिए और वहीं भाई कहते हैं कि आंखें खराब हो गई बच्चों को पाल कर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। जीते जी अपने बाप को ऐनक नहीं देते खरीद कर, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। ओके वफा मुमताज अली खोसो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम एंड खुश आमदीद। वफा मुमताज अली खोसो, कलंदर बख्श खोसो, वालेकुम अस्सलाम, शो तमाम लाजवाब आए, थैंक यू प्यारा भाई। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और यहाँ पर टाइम हुआ जी लेते हैं न्यूज ब्रेक, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे, वापसी जल्दी आप लोगों के पास। सुनते रहिए और साथ दीजिए, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड टी स्किन ब्यूटी शो।
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
4: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स।
5: कलाकार राणा सनाउला जो है पीटीआई इस्लामाबाद से चढ़ाई की कोशिश कर रही है, लॉन्ग मार्च लाइक ए भी केपी के जहाज सब वसीला इस्तेमाल कया पाया वजन अफगानिस्तान में दहशतगर्दी थी है, अफगान पॉलिसी से पीटीआई का सिवाय समूरी कौम मुतफिक है। खैबर पख्तूनख्वा में वधंदड़ दहशतगर्दी के हर कीमत रोकणो पवंदो, केपी के जे अवाम जो दहशतगर्दी खिलाफ कुर्बानियूं सारा जोगियूं आहिनि, ख्वाहिश आहे त केपी के भी मुल्क जे ॿियनि सूबनि जीअं तरक़ी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं, वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ऐं खैबर पख्तूनख्वा जी सूरतहाल ते वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग ॾिनी। वज़ीर आज़म जे कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान में अवामी भलाई वारा क़दम जारी रखण जी हिदायत। हिन वक़्त ख़बर नाहे ईरानी हुकूमत ऐं मुल्क जो इंतज़ाम केरु हलाए रहियो आहे, ईरान जो ॿियो नंबर क़यादत ॾे ख़तम थी चुको आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जी इंतिहा संगीन आहे, ख़बर नाहे त ईरान खे केरु हलाए रहियो आहे। अमरीकी नायब सदर जे डी विंस चयो आहे त वॉशिंगटन ईरानी सदर ऐं परॾेही वज़ीर सां राब्ते में आहे, जंग जे ख़ात्मे लाइ यूरेनियम जो रचाव घटाइण वारा वाइदा काफ़ी न आहिनि, तहरान खे यूरेनियम जे रचाव में वाज़े घटिताई करणी पवंदी। कतर जे सालसे में अमेरिका ईरान जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि, ॻाल्हियुनि खे नतीजनि ताईं पहुचाइण वारे कोशिशनि खे बि जारी रखियो वियो आहे। कतरी परॾेही वज़ारत जे डायरेक्टर इब्राहिम बिन सुल्तान अजमी चयो आहे त मके इतिहादी ख़ते जे मुल्कनि जे वसीलनि जे तहफ़ुज़ ऐं इस्तेहकाम यकीनी बणाइण लाइ सहकार खे वधीक मज़बूत कंदो। अमेरिका ईरान जंग पाकिस्तान अफगानिस्तान उत्तर अफ्रीका ऐं विच ओभर जे मुल्कनि जी आबादीअ खे वधीक मुतासिर कयो आहे, खिते में मौजूद इंतिहाई ग़रीबनि मां अधु ग़रीब पाकिस्तान में रहनि था। आलमी मालियाती इदारे IMF जी नई रिपोर्ट में छिरकाईंदड़ इंकशाफ़ IMF रिपोर्ट में चयो वियो आहे त खिते में जारी तकरार सां तेल जूं क़ीमतूं वधियूं आहिनि, महांगाई सबबि गुरबत में बि वाध थी आहे। खिते में मौजूद ग़रीबनि मां 48% पाकिस्तान में आहिनि, अफ़गानिस्तान शाम ऐं यमन में बि गुरबत वधी आहे। जमनी हुसैन पारां रियाज़ जे के ख़ारिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐं अबाज एयरपोर्ट खे मिज़ाइल ज़रिए निशानो बणाइण जी दावा हुसी विड़ाकनि मौजूदु सऊदी जे कमिसूस्टेक में एयरबेस खे निशानो बणायो आहे। सऊदी अरब हुसैन जे हमले जी तसदीक न कई, रियाज़ जे ॾखण में मिज़ाइल खे नाकारा बणाइण जी दावा। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि रेलवेज़ में सुधारनि बाबति इजलास, शहबाज शरीफ जी MLV1 ते कम तेज़ करण ऐं रेलवेज़ में कारपोरेट तर्ज़ जा सुधारा आणण जी हिदायत। MLV1 जी तामीर लाइ कमर्शियल मनसूबनि ज़रिए बैंक खां फंडिंग वठण जी मंज़ूरी डि॒नी वई, शहबाज शरीफ चयो आहे त रेलवेज़ जे कमर्शियल ज़मीन खे इस्तेमाल करे रेलवे खे बहितर बणाए सघिजे थो। इजलास खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त MLV1 खे चार हिसनि में विरायो वियो आहे, आर्मी फंडिंग सां गॾु मक़ामी फंडिंग ते बि कम जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज जूं ख़बर पख़्तूनख़्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं जारी आहिनि, 18 दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। सिक्योरिटी ज़रियुनि मौजूदु केपीके जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दनि जे थाकनि खे निशानो बणायो वियो, 13 दहशतगर्द जनम बेड़ा कया विया। बलोचिस्तान जे इलाइक़े मस्तोंग में कार्रवाई दौरान पंज दहशतगर्द मारिजी विया। बारूदी मवाद ऐं हथियार रखिया विया। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां कामयाब ऑपरेशन ते सिक्योरिटी फोर्सेज़ खे भेटा पेश कई वई। सिंध वाना या वज़ीरिस्तान नाहे जो माण्हू FIR दाखिल कराइण में देर कंदा। वाना बे माण्हू केस रिपोर्ट कराइनि था, सिंध में छो नथा अचनि? सुप्रीम कोर्ट जा सिंध में FIR दाख़िल करण में देर वारे केस ते सख़्त रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट पारां FIR में शिकायत कंदड़ बदिरां दरख़्वास्त ॾींदड़ जो लफ़्ज़ इस्तेमाल करण जी हिदायत। गुज़री दौरान DIG सखर नासिर आफ़ताब ऐं SSP खैपुर अमीर मखूद सुप्रीम कोर्ट में पेश थिया। पुलिस इख़्तियारनि IG सिंध जी हिदायत ते FIR देर बाबति रिपोर्ट पेश सुप्रीम कोर्ट में पेश कई। सिंध में FIR दाख़िल थियण में देर ते सुप्रीम कोर्ट पारां सिंध पुलिस ते सख़्त कावड़ जो इज़हार कयो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
3: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
6: सुपर वाइट।

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमालु करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियणु, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियणु, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबाजे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थांव खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।

0: स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 बजे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: खुशखबरी अवांजे पंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुनातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अजा मुस्तफा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियन जो इलाज, बार जो न थियण, बांझपन।
0: डॉक्टर अजा मुस्तफा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी। याद रख निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वने थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
2: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
3: 03132525786।
4: जी हाँ 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

कले माइजो फोटो लगल आहे ऐं डॉक्टर माइजो फोटो ॾिसी करे तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त बाबा हीअ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं जो जेको कलर आयो वाइट ऐं थोरो हल्को हल्को ब्लू कलर आहे सो इहो जॾहिं तव्हां कॉम्बिनेशन ॾिसी वञो त पोइ तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त बाबा तव्हां सही प्रोडक्ट वठो पिया बाक़ी जेके पढ़ियल आहिनि उन्हनि खे त ख़बर आहे वॾनि वॾनि अखरनि सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लिखियल आहे जेको तव्हां नालो ॾिसी करे परचेज़ करे सघो था ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश मिली रहियो आहे उहो बि वठण न विसारींदा तव्हां लाज़मी ट्राए करियो जनाब ख़ूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहें तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से ही आप अपनी ख्वाहिश को पूरा कीजिए क्योंकि जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाते हैं महंगे हो चाहे वो कितने सारे या फिर वो ऐसा दावा करता हो कि भाई आपके चेहरे को अच्छा बना देंगे गोरा बना देंगे लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट का यूज करना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि आप वाकई किस ट्रैप में फंस चुके हैं क्योंकि जब आप एक मरतबा कोई केमिकल वाला प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगा लेते हैं ना तब उससे जान छुड़ाना और अपनी स्किन को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इन तमाम चीजों से बचिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए डी स्किन का फार्मूला बहुत सेफ है आप सब लोगों के लिए नॉर्मली आप हर स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अब तो खैर से सर्दियां भी आ रही हैं तो सर्दियों में तो वैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का यूज करते हैं अगर आप भी इस तरह का कोई सीन बना रहे हैं या बना चुके हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को हमेशा याद रखिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती में चार चांद ला देगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तमाम भी पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइण चाहियो था तो तव्हांखे डायल करणो आहे 3 273 8 4309 ॿुड़ी 332 73 84 309 ऐं ॿियो नंबर आहे 03 12 50 25 907 ॿुड़ी 312 50 25 907 ही ॿई नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे ऐं डी स्किन फेस वॉश खे अवेलेबल कराईंदा हलो बाबा सुहिणा सुहिणा थींदा हलो प्यारा प्यारा थींदा हलो ऐं पंहिंजी खूबसूरती खे ॾिसो त हाणे तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाइण

कई आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो अॼु जेको आहे न मामा खां सवाल पुछियो आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में ॾिसो मां तव्हांखे डेली केॾियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदी आहियां पर जॾहिं क़िस्मत सां मां तव्हांखां हिकिड़ो सवाल पुछंदी आहियां त तव्हांजी बती गुल थी वेंदी आहे ईअं छो आख़िर अॼु मामा खां सवाल पुछियो आहे त मूंखे ॿुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि जेको वाइटमिन ई बीट्स आहे ऐं माइक्रो बीट्स आहे इन्हनि जो छा कमु आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि यानी की इन्हनि ॿिनि सीज़न जे हुजण सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे कहिड़ो फ़ाइदो मिले थो ऐं तव्हांखे कहिड़ो फ़ाइदो मिलंदो इहो तव्हां मूंखे ॿुधायो ऐं 888 ते ऐं फेसबुक ते तव्हां मूंखे ज्वाइन कंदा हलो था ऐं जिन खे नाहे तरीक़ेकार ख़बर त मैसेज कीअं कंदा असांखे त तव्हां पंहिंजो मोबाइल खणो मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञो टाइप कयो LRK सिंगल स्पेस ॾियो पंहिंजो पूरो नालो लिखो ऐं मैसेज लिखो हुनखे शेयर करे छॾियो 888 ते ऐं अगरि तव्हां मूंखे फेसबुक ते ॿुधण चाहियो था फेसबुक ते ज्वाइन करणु चाहियो था त जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है वहाँ पर आइए आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिलती है उसे आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे तो जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कीजिए जनाब कैसी कंजूसियां ओके जी सो ये तरीके कार फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों ने किया या फिर अभी तक रहता है और रहता है तो क्यों रहता है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये मैं चाहती हूँ कि जो आप गलत से प्रोडक्ट लगाना शुरू करते ना उनसे तो कई गुना बेहतर है कि आप कोई अच्छा सा कोई प्यारा सा और कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाएं जो आपके चेहरे पर खूबसूरती देने के साथ साथ आपके चेहरे पर निखार भी लाए आपके चेहरे की हिफाजत भी करे और आप हमेशा के लिए खूबसूरत भी हो जाए अच्छा हा इहा ॻाल्हि बि तव्हां सां शेयर कंदी हलां कुझु माण्हुनि खे ईअं लॻंदो आहे त बाबा असां प्रोडक्ट लॻायूं था ऐं प्रोडक्ट लॻाइण सां अगरि छॾे ॾींदासीं त असांखे जेको रिज़ल्ट मिलियो उहो ख़तम थी वेंदो त अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कयो था त जेको रिज़ल्ट तव्हांखे मिलियो हूंदो उहो तव्हांजो आहे बाबा तव्हांखां केर बि कोन खसींदो चाहे तव्हां प्रोडक्ट यूज़ कयो था या नथा कयो सम्झी विया जेकी तव्हांखे ख़ूबसूरती मिली आहे उहा हमेशा तव्हांजी ख़ूबसूरती आहे ऐं तव्हां हमेशा जे लाइ ख़ूबसूरत थी वेंदा सो मर्द मायूं सभी ट्राए करे ॾिसो अगरि तव्हांजे घर में शादियूं थियण वारियूं आहिनि या तव्हांजी पंहिंजी शादी थियण वारी आहे त बाबा छॾियो सभिनी ॻाल्हियुनि खे दुनियादारी खे हर चीज़ खे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो सो ये तो बातें थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में फिलहाल आप लोगों के साथ जो बातें होंगी वो आप लोगों के फीडबैक से रिलेटेड होने वाली क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं तो उनकी जाने भी आती हैं और यहाँ पर हमारे साथ फहीम भाई कहते हैं कि टॉपिक बताओ मैं अभी आया हूँ अभी मुझे लग रहा है कि आपने सवाल सुन लिया होगा और ये हमारे साथी हसनीन रजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम थारो शाह में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे बिल्कुल जी थारो शाह में डी स्किन ब्यूटी क्रीम असां ऑलरेडी अवेलेबल कराए छॾी आहे सो तव्हां हसनीन वरती आहे या कोन वरती आहे उन खां अलावा एसन कहते हैं टॉपिक का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया काॾे विया जेके चवंदा आहिनि पहिरियों जवाब मां ॾींदो आहियां ख़बर पए बिल्कुल इहा ॻाल्हि मां न ताईं वेट कयां थी तव्हांजो जवाब मूंखे छो न मिलियो आहे ॾिठो वञे त एसन तव्हां बि जवाब न ॾिनो आहे तव्हां बि ॾियो ख़बर पवे ठीकु आहे और हमारे साथ हैं जी एक मिनट ज़ेन कहते हैं कि हां जी हम भी लगाते हैं डी स्किन और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सिडो क्या बात है ऐसे ही लगाते रहिए दर्दी दिल कहती हैं कि टॉपिक चंदा फेशियल वाला निखार देते हैं ओके अली रज़ा लगारी भाई कहते हैं सिस्टर नदीम मीरानी प्ले करें मां कोशिश कयां थी भाउ अगरि मूंखे मिली हो टाइम बची हो त तव्हां जे लाइ बिल्कुलु नदीम मीरानी हलाए वठंदासीं पर मूंखे तव्हां ॿुधायो त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाई आहे ऐं तव्हां खां जेको सवाल पुछण जवाब तव्हां मूंखे छा था ॾियो निदड़ी हमारे साथ मौजूद कई थी हाय हेलो मैं भी आ गई भला बहुत अच्छा किया भला तुमने अच्छा हसनैन कहते हैं कि आबिद भाई ने अवेलेबल कराई थारो शाह में डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल जी आबिद भाई ने थारो शाह में डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा दिया है आबिद भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराने में बाकी लोग जो हमें सुन रहे हैं वो भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कराइए ठीक है अवेलेबल तो आप लोगों के लिए अब हो चुकी है अब ये काम बनता है कि आप परचेज कब कर रहे हैं और आप इस्तेमाल कब कर रहे हैं

अच्छा पोस्ट के लाके शेयर करो तो वो कौन है? दर्द दिल कहती है अमेजिंग सॉन्ग, थैंक यू नानू। और चाचा कहते हैं माइक्रो बीट्स क्या है, ये तो मैंने आप लोगों से पूछा है, मैं तो आपको रोज ही बताती हूँ, आज आप मुझे बताइए। निधि कहती माँ पप्पू तू मुझे पप्पी। ओके लक्ष्मी अबड़ू हमारे साथी, वालेकुम असलम कहती मोल इस्लाम सिदरा कड़ा हाल है तवाजा तबियत ठीक है। अज माँ भी पांजे शहर सखर में थो शो बुधा, रात वापसी आ कराची जी, वो कराची में बुध नासी शो चमन जो गानो बुधायो। अच्छा बिल्कुल भामा कोशिश क्या थी तांजी पसंद जो गानो लाए था, पर तमा जेको सखर मा वन्यो था कराची त सखर मा तमा जेको आ ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करे लाजमी वंजो, मता कराची में मिले न करे सखर में तो मिले थी त तमा सखर मा डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करे वंजो ठीक आ विसार जो न।

अरे वाह भाई, किशोर भाई को तो सब पता है। ओके जी ओके। और अर्ज मोहम्मद गोला भाई हमें सुन रहे हैं शहर जेगा बाबा से, कहते हैं अर्ज मोहम्मद गोला, मुजफ्फर अली गोला, अजहर अली गोला, शो जबरदस्त लाजवाब आवाज आपकी, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। मोहम्मद जमान कहते हैं टॉपिक माइक्रोबीट्स और वाइटामिन बी जो होते हैं ना, चेहरे को नरम मुलायम और चमकदार बनाते हैं। वाइटामिन बीट से चेहरे की खुश्की दाग धब्बे खत्म करता है, ऐलान खत्म। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका जवाब थोड़ा सही नहीं है। अच्छा, ये हमारे साथ अब्दुल्ला अली गुलाब है। ओके सो अब्दुल्ला अली लिखते हैं कि वाइटामिन ए बीट्स जो होते हैं ब्यूटी क्रीम में जल्द को नमी फराहम करने और जल्द को नरम रखने में मदद के लिए शामिल किए जाते हैं। माइक्रोबीट्स से क्रीम को जल्द पर बेहतर तरीके से फैलाने में मदद कर सकते हैं, ताहम उनका असल काम क्रीम के इस फार्मुलेशन पर मुनसर होता है। इस प्रोडक्ट के दुरुस्त फवायद इसमें शामिल अज्जा और फार्मुलेशन के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकते हैं। ओके, अब्दुल्ला आप मुझे बताएं जी स्किन ब्यूटी टीम का यूज करते हैं? हाँ जी, जेको मने ना था पोना की ये चाहिए सजे, बस सही आए को भी थोड़ो मुझे को नदिया लगती थी। तारिक भाई कहते हैं सजाद अली रुस्तमानी मातली से शो सुन रहे। अच्छा, सजाद भाई का गाना हमने कल ही लगा लिया था तारिक भाई, यही वाला गाना लगाया था जो सजाद भाई ने फरमाइश करी है। और रशीद खोसो में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, हैदराबाद से आपने मुझे ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया नहीं रशीद भाई, बताएं तो हैदराबाद में मिल रही है? वैसे हाँ मिल ही रहे हैं, तो आप जाइएगा और परचेज कीजिएगा।

जी पहिरियां इहो हाल अहिवाल ॾियो, सभ खां पहिरीं तव्हां खां मां ख़बर अथव छा पुछंदमि, इहो पुछंदमि त सभु हाल अहिवाल छॾियो, सभु ॻाल्हियूं छॾियो, पहिरियां मूंखे ॿुधायो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाई अथव कोन लॻाई अथव, क्योंकि जब आप जादू नगरी जाएंगे तो वहां पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके काम आएगी, तो जाइएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम साथ ले जाइएगा, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, आपकी खूबसूरती के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और जी हमारे साथ है ये, हाय आपी कैसी हो, शो इज वेरी नाइस, आई एम सितारा फ्रॉम सुल्तानपुर से, आपी सुनो हर अच्छा तुम गानो लिखो है अहमद मुगल जो, बिल्कुल मैं कोशिश किया थी सितारा तुम के लिए गानो हलाइंदी, और ये किसी ने मैसेज किया है सिर्फ बालवीर लिखा है, बालवीर आपको वेलकम कहते हैं, और गोट मोहम्मद तो थे हबीबुल्ला थे बुक आज सिदरा मुस्कान शो तुम वेरी नाइस है, सलाम तुम वालेकुम असलम भाड़ियो अलवाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई को हाँ सभी का पुछंदम सब जेस तीन न लगाइंदा तेस तीन को पचर छींदीमाव अल्लाह डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही इस्तेमाल कराए पो जान छींदीमाव चाचा कहते हैं बेटा सिडो सॉन्ग की रिक्वेस्ट है चाचा बिल्कुल तुम गानों हलाइंदे पर जेस तीन तुम सवाल जवाब न डींदा तेस तीन को हलाइंदी अज मुख्य सवाल जवाब जो ढींद गानों हलाइंदस हाँ तवे अव तो ऐसू केर केर गानों बुधी सके तो अजी प्रोग्राम में

0: ये हमारे साथी जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम योर अदो, अदो है जी, अनवर अली भाई फ्रॉम सोनहरी फ्रॉम ओके. आज भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा. अब्दुल्ला महर कहते मीरपुर खास से आपको वेलकम. डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कर रहे हैं फैमिली में, जियो प्रोग्राम, जियो जी, तमाम भी जियो, जेके जेके जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर ही रहा है. हाँ ब्याह चंदा असा के छूती पाई चवी तां भी लगा ना तां के कें चलो आए. अच्छा पिटोरो से वफा सुल्तान शर हमारे साथ है एंड रामचंद फोजिया का गाना तो सुनाए. ओके सवाल जवाब दो तब बुध रहा है. महबूब अली मोरो सिटी से मैं सुन रहे हैं सिस्टर कुंज सिद्रा मुस्कान. अस्सलाम वालेकुम कुंज, कुंज कुंज हसके जलाल तो प्ले करो, कंजूसी करती है सॉन्ग सुनाने में, आपकी मर्जी, सो नाइस ऑफ यू. तमाम भी तो ऐसो कड़े कड़े कंजूसी करे वठन आयो न दिस अज जी मा का सवाल पूछा था जवाब न था बुधायो तर में मतलब तां जी कंजूसी ही मुजी कंजूसी बराबर थी वही सफा बराबर. पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के वठन में तां कंजूसी न कजो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी छो. हाँ मां सोचा थी तो वाकई रोज रोज मान जा गाना हला हला नेट मां भी तक जी पई आया. हाँ तवा का एड़ा एड़ा सवाल पुछंदम, एड़ा एड़ा सवाल पुछंदम जी ताने जवाब ही नहीं दे सको. आई मां ताजो गाना.
1: इट्स 2:30 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में. डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम
0: सोना दिखा जो सबनीन का तो तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था. हर स्किन जिलाए आए, हर मानू जिलाए आए, ट्राई कयो बाबा सुन सुन थी वेंदा. आई हते टाइम टू आई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ओ ही वनी ओ ही मोटा थी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए.

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट, पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि 4 रंग जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं 4 रंग जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरियुनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ 3 ॾींहनि में। जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर मिल्स, डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
8: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
0: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
9: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
9: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-252-5786।
9: जी हा, 2315-25-786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

अलावा मां तव्हांखे केतिरो ॿुधायां थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में, का ॻाल्हि तव्हां बि समझी वञो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम बसि पाण वञी परचेज करे अचो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा तव्हांखे इलाही सारा फ़ाइदा मिलंदा, मां जेतिरा ॿुधायां थी न शायदि हुन खां डबल ते मिली सघनि था। सो तव्हां बि लॻायो ऐं सुञा थी वञो, फ़ाइदा हली आई अथव। चए थी छो मूड ख़राब कयो अथई, हालांकि हुजे छो मूड ख़राब कयो अथई।

मतलब पुछी वठंदा सी जीस किन ब्यूटी क्रीम लगाई थे कोन निदड़ी कहती थी कि मेरी एक दोस्त थी बचपन में सितारा काड़े वही हुआ हाने अधी अच्छा किशोर भाई तुम इलाही सारा कमेंट करी सजाए ना वे सब तांजे कमेंट पढ़ी छड़ो फराज डेहरी उसामा और फराज की तरफ से सलाम जी वालेकुम अस्सलाम और कहते हैं विटामिन ई बीट से खूबसूरती के लिए होते हैं अच्छा सही सही सही अच्छा मुगल उमरानी भाई भी हमारे साथ मौजूद है स्टिकर सेंड कर दिए बहुत शुक्रिया अदो चाहे तो अदा सही कह रहा है ऐसी बहाने सब सवाल पर बात तो करेंगे सवाल ते गालाएं वो जरूरी ना इन खां मुखे यो लगे तो ता सब मानो गौर सा बुदना ता बाबा प्रोडक्ट जे बारे में केडी केडी चीजों असा के बुधाई वनन थियो ये ना ता सुभाणी वरी सदरा को प्रोडक्ट जे बारे में असा का सवाल पूछे जको असा के ना अचे अई असा जो गानो ना हले गाने जे करे तो तमा कुछ भी करे सको ता सो इसीलिए ये रूल है कि अगर आप सवाल का जवाब सही देते हैं तो आपका गाना लगाया जाएगा खास करके तब तब जब मैं आप लोगों से प्रोडक्ट के बारे में पूछूं तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों गौर से सुनिएगा कि आपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी बातें आपको बताती हूँ वो गौर से सुननी है गौर से सुननी ताकि आपको पता चले कि भाई क्या क्वालिटीज हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अगर जो लोग लगाते हैं उनको तो पता है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने से कितने सारे फायदे मिल रहे हैं हमें बाकी जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाई है तो उनको भी पता चले कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के कितने सारे फायदे मिल सकते हैं और हजार भाई हमारे साथ मौजूद वालेकुम अस्सलाम हजार भाई वफा शहजादो मक्सी भाई लाड़कानी खां असा के बुधी पयो थैंक यू वही भाई कहते अदा माइक्रो बीट्स का काम स्क्रब रग अरे भाई स्क्रब वरी काड़ा अची हो स्क्रब जो तो मैं नालो ही न वठंदी आया ऐं उल्टो तव्हांखे मना कंदी आहियां त ईअं रगड़ी था न कयो स्किन खे क्रीम लगाए करे एसन कहते टॉपिक माइक्रो बीट्स स्किन को

ओके जी, आपने तो पूरा ये पैराग्राफ भेज दिया है मुझे चैट जीपीटी से पूछ के। अच्छा है, बहुत बढ़िया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि हमारे काम की तो एक भी बात नहीं थी। अजू भाई एकड़ो मिरेकल थी वियो आ त फई भाई जा सब दुका जके है ना उए फेल थी वया है। यासीन खंड चौथा त असा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाईंदा, बिल्कुल बाबा तां लगाईंदा रहो। हाँ निदड़ी मां पाणी या चीज दिसा पई है, मके खिल अची पई पर असा थोड़ो कंट्रोल कयो आ। मोहम्मद समान कहते बुआ जी आप

जी जी मोहम्मद जमान भाई, आप ऐसा किया करें कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके मुझे बताएं कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कह रही मुश्किल में विझी छदई हाणी रीड भी कजा कमेंट मुंह पढ़ियो, पर उन्होंने कहा कम जी गाल कोन हुई मुझे लाए।

भाई ढोलो तव्हांखे बि मिले त हुन खां पुछजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाई अथई ढोला कोन ढोलो अगरि चवे त न कोन लॻाई आहे ढोले खे चइजो वञ ढोला वठी अचो हाणे जो हाणे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल खां फौरन बाद तव्हांखे मिलंदी उहा ख़ूबसूरती जेका तव्हांखे कॾहिं बि शायदि कोन मिली आहे ऐं तव्हां ॾिसी पंहिंजो चहिरो चवंदा वाह साईं वाह ही त कमाल थी वियो असां पहिरियां छो न पिया वठूं डी स्किन ब्यूटी क्रीम और हमारे साथ ही साजिद हुसैन सूमरो कहते हैं सलाम सिद्रा जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो आहे गुड आहे फ्रॉम DIG ऑफिस लाड़काना से अहमद मुगल का गाना तव्हांखे सुभाणे ॿुधाईंदासीं तव्हांजा पसंद जा गाना किशोर भाई कहते अदा आउं तुंहिंजी आवाज़ में एतिरो मगन हूंदो आहियां तूं कहिड़ा कहिड़ा फ़ाइदा ॾसींदो ख़बर ई न आहे पवंदी ॾिस ॾिस ॾिस

अरे भाई तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं लॻाईंदा त सभु कम डी स्किन ब्यूटी क्रीम ई कंदी, समझो था। तव्हां खूबसूरत थी वेंदा, सुहिणा थी वेंदा, प्यारा प्यारा थी वेंदा। हांजी खिली पोइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो। बाक़ी सोचण वारी ॻाल्हि आहे, ईअं छो चवंदा आहिनि खंड जो जहाज़ ॿुॾियो अथई, खंड जो ई जहाज़ छो ॿुॾंदो आहे? सोचने वाली बात है। बाकी चीजों के बारे में क्यों नहीं बात?

0: अच्छा महेश सर हमारे साथ है, महेश सर साहब वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम कब इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा अॼु मां अवां सां बिल्कुलु उहा कार कई आहे, तव्हांखे सॼो सिलेबस पढ़ाई तव्हां खां टेस्ट वरिती आहे, पर उहो चवंदा आहिनि त जॾहिं जेके सदोरा ॿार हूंदा आहिनि उहे कन ॾेई करे सभु कुझु चीज़ूं सभु समुझंदा आहिनि, पर जॾहिं टेस्ट ई वारी ईंदी आहे त उहे ई पास थींदा आहिनि, जेके सही तरीक़े सां मतिलबु जेको आहे न उहो जेको बि उन्हनि खे टीचर पढ़ाईंदी आहे उहो समुझंदा आहिनि, पर जेके निकमा हूंदा आहिनि उहे सिर्फ़ वेही हा कंध हिलाईंदा आहिनि। तव्हां बि उन्हनि वारी कार कई आहे, टाइम जेको आहे सफ़ा तेज़ी सां गुज़रंदो वञे थो, ऐं टॉपिक जो जवाब अगरि मां तव्हांखे ॿुधायां त टॉपिक जो जवाब बिल्कुलु मां डेली तव्हांखे नबी न हज़ार दफ़ा त लाज़मी ॿुधाईंदी हुयमि, हज़ार भा खां पुछजो। अगरि असां हिते ॻाल्हि कयूं था डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि जेको वाइटमिन ई बीट्स आहे ऐं माइक्रो बीट्स आहे न, हिकिड़ा जेके माइक्रो हूंदा आहिनि माइक्रो बीट्स जेके सफ़ा नंढा हूंदा आहिनि जेके ख़ासि करे फेशियल जे अंदरि एड थियल हूंदा आहिनि, ऐं उहो इन लाइ एड थियल हूंदा आहिनि जीअं फेशियल जो जेका रिज़ल्ट हूंदा आहिनि 10 गुना वधी वेंदी आहे, ऐं ॿिया नंढा नंढा बीट्स हूंदा आहिनि जेके वरी स्क्रब जे अंदरि एड थियल हूंदा आहिनि। सो उहे
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोजेक्ट बाय अक्सर

0: हुन थो मञाए सघे जागती एजेंडा खे क़ौमी मुफ़ाद ते तरजीह न ॾिनी वञे। हुकूमत ॻाल्हियुनि जा दर बंदि न आहिनि पिया। पीटीआई आज़ादी मुफ़ादनि खे पासे करे मसलनि जे हल लाइ अॻिते वधे। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउल्ला चयो आहे त पीटीआई इस्लामाबाद ते चढ़ाई जी कोशिश करे रही आहे। लॉन्ग मार्च लाइ केपीके जा सभु वसीला इस्तेमाल कया पिया वञनि। अफ़गानिस्तान मां दहशतगर्दी थी आहे। अफ़गान पॉलिसीअ ते पीटीआई खां सवाइ समूरी क़ौम मुतफ़िक़ आहे। इस्लामाबाद असांजो आहे। लॉन्ग मार्च ज़रूर इस्लामाबाद ईंदो। ॻाल्हियूं ॿीहर थियण घुर्जनि, ब्रेक न लॻण घुर्जे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त मार्च पिशावर खां खैबर ऐं खैबर खां पेर वधाए ईंदो। शायदि सुभाणे मां बि मार्च में शिरकत कयां। वॾे वज़ीर सां बि मिलणो आहे। एमएल वली खान खे बि एपीसी जी दावत ॾियणी आहे। खैबर पख़्तूनख़्वा में वधंदड़ दहशतगर्दीअ खे हर क़ीमत ते रोकणो पवंदो। केपीके जे अवाम जूं दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ क़ुर्बानीूं सारा जोगियूं आहिनि। ख़्वाहिश आहे त केपीके बि मुल्क जे ॿियनि सूबनि जीअं तरक़ी करे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जूं वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान ऐं खैबर पख़्तूनख़्वा जी सूरतहाल ते वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग ॾिनी। वज़ीर आज़म जे कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान में अवामी भलाई वारा क़दम जारी रखण जी हिदायत। हिन वक़्त ख़बर नाहे ईरानी हुकूमत ऐं मुल्क जो इंतज़ाम केर हलाए रहियो आहे। ईरान जो ॿियो नंबर क़यादत बि ख़तम थी चुकी आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जी सूरतहाल इंतिहाई संगीन आहे। ख़बर नाहे त ईरान खे केर हलाए रहियो आहे। अमरीकी नायब सदर जे डिविन चयो आहे त वॉशिंगटन ईरानी सदर ऐं परडेही वज़ीर सां राब्ते में आहे। जंग जे ख़ात्मे लाइ यूरेनियम जो रचाव घटाइण वारा वाइदा काफ़ी न आहिनि। तेहरान खे यूरेनियम जे रचाव में वाज़े घटिताई करणी पवंदी। कतर जे साथीअ में अमेरिका ऐं ईरान जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। ॻाल्हियुनि खे नतीजनि ताईं पहुचाइण वारनि कोशिशनि खे बि जारी रखियो आहे। कतरी परडे वज़ारत जे डायरेक्टर इब्राहिम बिन सुल्तान अल हाशमी चयो आहे त मके इतिहाद ख़िते जे मुल्कनि जे वसीलनि जे तहफ़ुज़ ऐं इस्तेहकाम खे यकीनी बणाइण लाइ सहकार खे वधीक मज़बूत कबो। अमेरिका ईरान जंग पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उत्तर अफ्रीका ऐं विच ओभर जे मुल्कनि जी आबादीअ खे वधीक मुतासिर कयो आहे। ख़िते में मौजूदनि ताईं ग़रीबनि मां अधु ग़रीब पाकिस्तान में रहनि था। आलमी माहौलियाती इदारे IMF जी नई रिपोर्ट में छिरकाईंदड़ इंकशाफ़। IMF रिपोर्ट में चयो वियो आहे त ख़िते में जारी तकरार सां तेल जूं क़ीमतूं वधियूं आहिनि। महांगाई सबबि गुरबत में विवाद थी आहे। ख़िते में मौजूद ग़रीबनि मां 48% पाकिस्तान में आहिनि। अफ़ग़ानिस्तान, शाम ऐं यमन में बि गुरबत वधी आहे। यमनी होसियुनि पारां रियाज़ जे किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐं अबाह जे एयरपोर्ट खे मिज़ाइल ज़रिए निशानो बणाइण जी दावा। उसी विड़ाकनि मूजिबि सऊदी जे ख़मीस मुश्तक़ में बि एयरबेस खे निशानो बणायो आहे। सऊदी अरब जो हुसिन जे हमलनि जी तस्दीक न कई। रियाज़ जे ॾखण में मिज़ाइल खे नाकारा बणाइण जी दावा। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि रेलवेज़ में सुधारनि बाबति इजलास। शहबाज शरीफ़ जे ML1 ते कम तेज़ करण लाइ रेलवेज़ में कारपोरेट तर्ज़ जा सुधार आणण जी हिदायत। तामीर लाइ कमर्शियल मनसूबनि ज़रिए बैंक्स खां फंडिंग वठण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। शहबाज शरीफ़ चयो आहे त रेलवेज़ जे कमर्शियल ज़मीन खे इस्तेमाल करे रेलवे खे बहितर बणाए सघिजे थो। इजलास खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त ML1 खे 4 हिसनि में विरिहायो वियो आहे। आलमी फंडिंग सां गॾु मक़ामी फंडिंग ते बि कम जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिपके चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली,
4: वो भी सुपर वाइट की। ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
6: सुपर वाइट।
7: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
10: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
11: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
12: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट सभी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ए दवाओं मुफ्त में डिनी वेंदियूं। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरो ए थाव खणी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
7: मातली ए आसपास जी आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9-6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
13: खुशखबरी
6: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانج پن
7: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھندا نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لئے 24 کلاک کھلل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی

0: हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 3135525786।
0: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अरे न खुश्क और बेरोनक की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमें आहिन चावरन जी खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जी खूबियों जिल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरत तुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस मां आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
5: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
7: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखला ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे, जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा लेंसेज लगाईंदा। अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट सभी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ए दवाओं मुफ्त में डिनी वेंदियूं। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरो ए थाओ खणी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
2: मातली ए आसपास जी आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
8: खुशखबरी
0: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301343842।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
9: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
10: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
10: ऐं हा गोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252576।
10: जी हा 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
10: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ DFM 88 नेटवर्क ते।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत।

0: कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
5: खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
0: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130-86-3163।
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हिन वक़्त ख़बर नाहे ईरानी हुकूमत ऐं मुल्क जो इंतज़ाम केरु हलाए रहियो आहे। ईरान जे ॿियो नंबर क़यादत बि ख़तम थी चुकी आहे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो। ईरान जी सूरतहाल इंतिहाई संगीन आहे, ख़बर नाहे त ईरान खे केरु हलाए रहियो आहे। अमेरिकी नायब सदर जे डी विंस चयो आहे त वॉशिंगटन ईरानी सदर ऐं परॾेही वज़ीर सां राब्ते में आहे। जंग जे ख़ात्मे लाइ यूरेनियम जो रिचाउ घटाइण वारा वाइदा काफ़ी न आहिनि, तेहरान खे यूरेनियम जे रिचाउ में वाज़े घटिताई करणी पवंदी। अमेरिका ईरान जंग पाकिस्तान अफगानिस्तान उत्तर अफ्रीका ऐं विच ओभर जे मुल्कनि जी आबादीअ खे वधीक मुतासिर कयो आहे। खिते में मौजूद इंतिहाई ग़रीबनि मां अधु ग़रीब पाकिस्तान में रहनि था। आलमी मालियाती इदारे IMF जी नई रिपोर्ट में छिरकाईंदड़ इंकशाफ़। IMF रिपोर्ट में चयो वियो आहे त खिते में जारी तकरार सां तेल जूं क़ीमतूं वधियूं आहिनि, महांगाई सबबि गुरबत में बि वाधि थी आहे। खिते में मौजूद ग़रीबनि मां 48% पाकिस्तान में आहिनि। अफ़गानिस्तान शाम ऐं यमन में बि गुरबत वधी आहे। यमनी हौसियुनि पारां रियाज़ जे किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐं अबाह जे एयरपोर्ट खे मिज़ाइल ज़रिए निशानो बणाइण जी दावा। हौसी विढ़ाकनि मूजिब सऊदी जे खमीस मुश्तेक में बि एयरबेस खे निशानो बणायो आहे। सऊदी अरब हौसियुनि जे हमलनि जी तस्दीक न कई। रियाज़ जे ॾखण में मिज़ाइल खे नाकारा बणाइण जी दावा। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि रेलवेज़ में सुधारनि बाबति इजलास। शहबाज शरीफ जे ML1 ते कम तेज़ करण, रेलवेज़ में कारपोरेट तौर्ज़ जा सुधारा आणण जी हिदायत। ML1 जे तामीर लाइ कमर्शियल मनसूबनि ज़रिए बैंक्स खां फंडिंग वठण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। शहबाज शरीफ चयो आहे त रेलवेज़ जे कमर्शियल ज़मीन खे इस्तेमाल करे रेलवे खे बहितर बणाए सघिजे थो। इजलास खे ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त ML1 खे 4 हिसनि में विरिहायो वियो आहे। आलमी फंडिंग सां गॾु मक़ामी फंडिंग ते बि कम जारी आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज जूं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा ऐं बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी आहिनि। नरणा दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब KPK जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में ख़ारजी दहशतगर्दनि जे ठाकनि खे निशानो बणायो वियो आहे। 13 दहशतगर्द जहनम बेड़ा कया विया आहिनि। बलूचिस्तान जे इलाइक़े मस्तूम में कार्रवाई दौरान 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बारूदी मवाद ऐं हथियार हथ सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां कामयाब ऑपरेशन ते सिक्योरिटीअ खे फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई। सिंधवाना या वज़ीरिस्तान नाहे जो माण्हू FIR दाखिल कराइण में देर कंदा। वाना में बि माण्हू केस रिपोर्ट कराइनि था, सिंध में छो नथा अचनि? सुप्रीम कोर्ट जा सिंध में FIR दाख़िल करण में देर वारे केस ते सख़्त रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट पारां FIR में शिकायत कंदड़ बदिरां दरख़्वास्त ॾींदड़ जो लफ़्ज़ इस्तेमाल करण जी हिदायत कई वई आहे। ॿुधणी दौरान DIG सखर नासिर आफ़्ताब ऐं SSP खैरपुर अमीर सऊद मंगसी सुप्रीम कोर्ट में पेश थिया। पुलिस इख़्तियारनि IG सिंध जी हिदायत ते FIR में देर बाबति रिपोर्ट बि सुप्रीम कोर्ट में पेश कई। सिंध में FIR दाख़िल थियण में देर ते सुप्रीम कोर्ट पारां सिंध पुलिस ते सख़्त कावड़ जो इज़हार कयो। कराची जे वापारी मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन जी कार्रवाई मुकमिल। कमीशन जांच रिपोर्ट 15 अक्टूबर ताईं वरी वज़ीर खे पेश कंदो। अदालती कमीशन वाके वारी हंध जो दौरो करण सां गॾु 15 ॿुधणियूं कयूं आहिनि। पुलिस आफ़िसर्स, डॉक्टर्स ऐं खानदान ऐं शाहिदनि जा बि बयान रिकॉर्ड कया। हैदराबाद में पंजारी थाणे जी हद में 3 ॼणनि खे फायरिंग करे ज़ख़्मी कंदड़ DSP मथां दहशतगर्दी एक्ट तहत FIR दाख़िल। मोहम्मद वक्कास काज़ी जी फरियाद ते DSP अशरफ कुरेशीअ ते केस दाख़िल कयो वियो। फरियादी मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त DSP अशरफ मुंहिंजे भाइटे नौशाद काज़ीअ खे घिटीअ में गाॾी बीहारण तां गारगन कई, जंहिं बाद जहिड़ो थियो। जवाबदार अशरफ कुरेशी फायरिंग करे ॾिनी, जंहिं में इरशाद काज़ी समेत 3 ॼणा ज़ख़्मी थिया। DSP अशरफ कुरेशी ऐं संदसि गार्ड गिरफ़्तार। शादत कोट भरिसां पीउ पुट सां गॾिजी पसंदि जो पणो कंदड़ धीउ ऐं संदसि मुड़ुस खे क़तल करे छॾियो आहे। कुबो सिदकान थाणे जी हद गोट गुलाब लाशारी में जवाबदारनि नारी नगमा ऐं नौजवान नदीम खोसो खे क़तल कयो। वारसनि मूजिब जोड़ो कुझु ॾींहं पहिरियां मर्ज़ी मूजिब शादी कई हुई, जंहिं तां खेन क़तल कयो वियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News,
2: brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

0: एलोवेरा
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 डी वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाखला ए ऑपरेशन 13 ए 14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे, जे में अखियन जी बीमारियन जा माहिर डॉक्टर उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लगाईंदा। अवां भी इन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा दवाओं मुफ्त में डिनी वेंदियों। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरों थाओ खी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रखे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301 43 842। अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन, हीअ में सूर।

0: असांजे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: ऐं हा, गोठन, शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-252-5786।
5: जी हा, 2315-2575-786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अरे न खुश बेरोनों की स्किन हर इतनी जलाए था
3: डैमेज एंड डल स्किन के कयो
2: आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिन में आहिन चार रंग की खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन नमी के लॉक करे आई चांदर जो खूबियों जल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर एंड रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम ईवन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के लिए अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियन औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई और औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
0: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर बेचैनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
8: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सबनी मरीजन लाए 3 दिन वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखला ए ऑपरेशन 13-14 अक्टूबर बरोज अंगारे अरबाजे डी फारान शुगर मिल्स में लगाई पई वञे जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लगाईंदा। अवां बि हिन मुफ्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूदु न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
9: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निजामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निजामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
6: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
10: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
10: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
10: जी हा, 2315525786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
10: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
2: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
3: खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाए 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबाजे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी नोट सभिनी मरीजन के लेंसेज खाधो चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थांव खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी चेयरमैन बावानी ग्रुप।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842। अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरत عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
7: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقا سعید ہر جمعے کے ڈی مریضن جو مفت علاج کندی
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 247-3141-230
8: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

tonight. Har din har peher, zindagi ki leher, GFM 88 network, sindh ki awaaz. अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक. रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस. हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे. खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं. हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली. राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287. खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी.
5: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी. मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी. मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी. जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं. घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी. राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो. टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं. नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा. एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली. राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163.
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली. डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी. औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन.
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी. यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो. निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे. निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी. वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 02-310-31-43-842. अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल.
5: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद.
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी.
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरत सिरतुन ऐं ॿारड़नि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
10: खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थांव खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
8: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331-252-5786।
7: जी हा, 2-31-25-25-786।
8: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़। Peace and heart.

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजरसानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की, जाने वाले चले जाते हैं, किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती, छाओं में धूप की तरह, जिस्म में रूह की तरह, गुजरे दिमाग से याद तेरी लगातार लहू की तरह, अब खाए जाए ये दरो दीवार मुझे किसी भूख की तरह, तेरे बिना नहीं घर भी घर, अकेले महसूस ये किया, तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला, खिजा भी आई बर वक्त और दिल का बाग भी रहा ना हरा, तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना, तू मुझ पे देखे इंसान बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली आसपास की अवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।
5: Now sit down here and let you and to forget it.

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गडल कॉमन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की मुलाकात गडल दिलचस्पी इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल आलमी अमुन ए सलामती वाले मामलों से गालू वालर कश्मीर तकरार भारत पारा सिंतास मुआदे के अल्तवा में रखने अफगानिस्तान में थन्दड़ दहशतगर्दी वाले मामलों से पिण गाल बोल कई वही ISPR मूजिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी अमुन लाए पाकिस्तान जो अजम वरजाईदे गडल कॉमन के अमुन मिशन में पाकिस्तान के किरदार ए कुर्बानियों के उजागर कर एंटोनियो गुतरेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ए अमुन मिशन में पाकिस्तान के कुर्बानियों के भेटा पेश की
7: मुजाकरात की इस ख्वाहिश को किसी सूरत भी रियासत को यर्गमाल बना के सियासी मुतालबात को मनवाने का हथकंडा जो है वो नहीं बनने दिया जाएगा। पीटीआई की जब से शनाख्त मिली तो उसके बाद से उनका एक ही जो है वो एजेंडा और मकसद रहा है सियासी रवादारी को खत्म करके अदम बर्दाश्त नफरत गाली गलोच का कल्चर जो है उसे सियासत में दाखिल किया जाए। ये किसी सूरत भी ना कानून ना आईन ना सियासी अखलाकियात इस बात की इजाजत नहीं देती।
6: रियासत के यर्गमाल बनाए को भी मुतालबो नथो मंजराए सकजे जाती एजेंडा के कौमी मफाद ते तरजीह न डिनी वजे हुकूमत गालन जा दर बंद नाहन कया पीटीआई जाती मफादन के पासे करे मसलन जे हल लाए अगते वधे वजीर आजम जे सलाहकार राणा सनाउल्ला चयो है तो पीटीआई इस्लामाबाद ते चढ़ाई जी कोशिश करे रही है। लॉन्ग मार्च लाए केपी जा सब वसीला इस्तेमाल कया पे वन अफगानिस्तान में दहशतगर्दी थी है अफगान पॉलिसी ते पीटीआई का सवाए समूरी कौम मुतफिक है। इस्लामाबाद असांजो आहे लॉन्ग मार्च जरूर इस्लामाबाद इंदो गालियों बीहर थियण घुर्जन ब्रेक न लगन घुर्जे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे तो मार्च पिशावर खां खैबर ए खैबर खां पेर वधाए इंदो सुभाणे मां भी मार्च में शिरकत कयां वॾे वज़ीर सां भी मिलणो आहे एमल वली खान खे भी एपीसी जी दावत ॾियणी आहे। खैबर पख्तूनख्वा में वधंदड़ दहशतगर्दी के हर कीमत ते रोकणो पवंदो केपी जे अवाम जो दहशतगर्दी खिलाफ कुर्बानियूं साराह जोगियूं आहिनि। ख्वाहिश आहे त केपी बे मुल्क जे ॿियनि सूबनि जीअं तरक़ी करे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ऐं खैबर पख्तूनख्वा जी सूरतहाल ते वज़ीर आज़म खे ब्रीफिंग ॾिनी। वज़ीर आज़म जी कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान में अवामी भलाई वारा क़दम जारी रखण जी हिदायत। पीपुल्स पार्टी सदाई जाती मफाद के कौमी मफाद ते तरजीह डिनी है केपी के गवर्नर जो अमन अमान बाबत इजलास करण बे गैर आइनी है। खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सोहेल आफरीदी काबीना के खिताब कंदे चयो है तो पीपुल्स पार्टी माजी में भी गलत किरदार अदा कंदी रही है। गवर्नर पारा इजलास की सदारत करण आइन ए जमहूरियत ते हमलो है। केपी पुलिस के पंजाब पुलिस बनाने की कोशिश न कई वे केपी हुकूमत सूबे में अमुन लाए संजीदा है वफाक पैं होड खत्म करे। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज समेत समूरन आइनी ऑप्शंस ते गौर करे रही है। गवर्नर राज लागू करण आखिरी ऑप्शन हों दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ चयो है तो पीटीआई वारा हर टिन महीनन बाद इस्लामाबाद ते काह कंदा आहिन इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च वारन का हर सूरत में बचाईंदासीं। इन वक्त खबर ना है ईरानी हुकूमत ए मुल्क जो इंतजाम केर हलाए रो है। ईरान जी बो नंबर की आदत भी खत्म थी चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो ईरान की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। खबर ना है ईरान के केर हलाए रो है। अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस है तो वॉशिंगटन ईरानी सदर ए परदेही वजीर से राबते में है। जंग की खात्मे लाए यूरेनियम जो रचाव घटाने वा वायदा काफी ना है। तेहरान के यूरेनियम के रचाव में वाजे घटताई करनी पवी। वजीर आजम की सदारत हेठ रेलवेज में सुधार बाबत इजलास। शहबाज शरीफ की ML1 से कम तेज करण रेलवेज में कारपोरेट तर्ज जा सुधार आने की हिदायत। ML1 की तमीर लाए कमर्शियल मनसूबन जरिए बैंक्स का फंडिंग वठण की मंजूरी दिनी वही। शहबाज शरीफ तो रेलवेज की कमर्शियल जमीन के इस्तेमाल कर रेलवे के बेहतर बनाए सकजे तो। इजलास के ब्रीफिंग में बुधाया वो तो ML1 के चार हिस्सों में विरायो वो है। आलमी फंडिंग से गड मकामी फंडिंग से भी कम जारी है।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
8: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
9: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
10: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
9: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
10: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
9: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
10: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
9: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
11: सुपर वाइट।
12: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
13: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
12: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
13: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
12: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतों ने बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
14: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
13: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
15: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
12: خوشخبری خوشخبری اکھن جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں اکھن جے سبنی مریضن لائے 3 ڈی واری مفت اکھن جی سرجیکل کیمپ پروگرام داخلہ ہے آپریشن 13-14 اکتوبر بروز انگارے ارباجے ڈی فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے جے میں اکھن جی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر انہن جی ٹیم اکھن جا مفت پھیکو آپریشن کندا لینسز لگائندا اواں بن مفت اکھن جی کیمپ میں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری مل کالونی نوٹ سبنی مریضن کے لینسز کھادو چشمہ دواؤں مفت میں ڈنوں ویندیوں مریض پان سا گد موسم مطابق بستر تھاؤں کھڑی اچن طرفا محمد عمر امین باوانی چیئرمین باوانی گروپ
11: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سیں گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163
16: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانج پن
11: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 210-31-43-842
14: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
17: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
14: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
17: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
14: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
17: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
14: 03125252786
17: جی ہاں 2315525786
14: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
17: سندھ جو آواز

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेस, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबॉरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
7: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
7: जी हा, 03135525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
4: सुपर वाइट।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
8: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
10: खुशखबरी अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीजनि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
5: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
11: खुशखबरी।
4: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
7: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
11: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
11: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
11: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 0331-252-5786
11: जी हा 231-525-786
7: GAFM रेडियो नेटवर्क
11: सिंध जो आवाज़

अरबाजो ॾिहाड़ो अरबा जे ॾिहाड़े जा शाम जा हसीन लम्हा हमेशह सां गॾु गॾु हूंदा आहियूं। असांजो ई साथ बिल्कुलु जेके में अव्हांजा सनी अव्हांजा पैगाम हणंदा चार चंड वक़्त जो अहसास शाम जा 7:15 थी चुका आहिनि ऐं प्रोग्राम रस रिहण जो बाक़ाइदा आगाज़ कयो आहे राग जी राणी साइण आबदा परवीन ॾिन सुहिणे ऐं मन मोहिणे आवाज़ सां। साइण आबदा परवीन जी हिन मधुर आवाज़ में जेका दुआ आहे उहा उन्हनि जीजल अंबड़ियुनि जी दुआ आहे। अवां सभिनी जे नाऊं कयो आहे साइण आबदा परवीन जो ही आवाज़।

वेलकम बैक एकदम वेलकम कर रहे हैं खुशी आमदीद चौंदा सौ के पंजे प्रोग्राम रस रिहान में रस रिहान पे इसके पंजे जीएफएम 90.4 मातली के लाइव स्टूडियो में एने सफर में आया हूं जे सफर जो साथी यार जे गुलाम कादर गिरानो वक्त जो एहसास शाम जा 7:22 मिनट थी चुका है शाम शाम जली थी त हर को पंहिंजे कमकार तां थकी टुटी ऐं लहंदो आहे त पोइ चवंदो त पंहिंजी घर पहुचां पंहिंजे मचन में पहुचां त बिल्कुलु इहो सिलसिलो जारी ई सारी आहे हिन वक़्तु जंहिं वक़्तु आउं अची रहियो हुउसि त ॾाढी रोड ते रश हुई सभिनी खे हमेशह हिकिड़ी गुज़ारिश कंदा आहियूं त गाॾी एहतियात सां असांखे हलाइणु घुर्जे एहतियाती इलाज आहे ऐं जेकॾहिं तव्हांजे हथनि में शाम जे टाइम ते गरमा गरम चांहि जो कप आहे त बिल्कुलु अव्हांखे चवंदासीं त इंजॉय गॾो गॾु अगरि बिस्किट या पकौड़ा या समोसा आहिनि त पोइ त वाह वाह शाहनवाज़ ख़ासि कली चई रहियो आहे त वात में पाणी छा कजे ऐं शाम जा लम्हा हूंदा आहिनि त शाहनवाज़ जेकॾहिं तव्हां बि शामिल थियणु चाहियो था त बिल्कुलु शामिल थी सघो था शामिल थियण जो तरीक़ो आसान सभ खां पहिरियों करणो इहो आहे जो तव्हांखे पंहिंजो मोबाइल खणणो आहे जी हा मोबाइल खे हथ में खणंदा हुन खां पोइ राइट या किरियल एसएमएस में वेंदा जिते सभ खां पहिरियां MTI लिखिजो हुन खां पोइ थोरो स्पेस ॾिजो पंहिंजो नालो पंहिंजो घोटु पंहिंजो शहर पंहिंजे वाण पंहिंजे वसंती जो नालो ज़रूरु लिखिजो असांखे बि ख़बर पए त किथे किथे दोस्त असांखे कनाइनि पिया ऐं पंहिंजी मौजूदगी जो अहसास ॾियारे रहिया आहिनि हुन SMS खे उमाणींदा 888-1 ते जी हा 88-81 ते असां नज़र डोड़ाई त अव्हांजा सनी अव्हांजा पैगाम काफ़ी तइदाद में पहुची चुका आहिनि अव्हां सभिनी साथियुनि जी जेका मोहबत आहे ऐं यकीन SMS मां ज़ाहिर थिए पियो त अव्हांखे असांजो इंतज़ारु हो त महिरबानी आहिनि अव्हां सभिनी साथियुनि जूं अव्हां सभिनी साथियुनि जे लाइ हिकिड़ो सॉन्ग प्ले कयो आहे तमामु बहितरीन सॉन्ग आहे मुनवर मुमताज़ मौलाई जो आवाज़ आहे ज़बरदस्त आवाज़ ऐं ज़बरदस्त सॉन्ग शाम जे हिननि लम्हनि में अव्हांजे नाम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियन जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन खे लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज़ गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316 3।
8: खुशखबरी,
0: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331-252-5786
3: जी हा 2315-2576
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़

वेलकम बैक एक दफ़ो ॿीहर भली कार ऐं ख़ुशि आमदीद चवंदासीं तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम रस रिहण जेको पेश कयो पंहिंजे GFM 90.4 मातली जे लाइ स्टूडियो मां हिन सफ़र में आयो आहियां तव्हांजे सफ़र जो साथी आर जे ग़ुलाम क़द्र। वक़्त जो अहसासु शाम जा 7:38 थी चुका आहिनि ऐं शाम हाणे आहिस्ता आहिस्ता राति में तब्दील थींदी पई वञे। अव्हांजा सनी अव्हांजा पैगाम असां ताईं पहुचनि पिया। पहिरियों SMS असां ताईं पहुता ॻोठु हाजी मोहम्मद रहीम लाशारी लॻे शहर ॾाॾू खां, हाजी गुल हसन गुल लाशारी, अब्दुल ख़ालिक लाशारी, फौजी अब्दुल मालिक लाशारी एंड मोहम्मद आक़िब एंड मोहम्मद आसिम लाशारी। भाउ ग़ुलाम क़द्र गिरणो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, महिरबानी आहे न अव्हांजो अव्हां प्रोग्राम खे पसंदि कयो आहे, महिरबानी आहे न अव्हांजो। हाजी गुल हसन गुल लाशारी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शहर गुलाब लगारी खां असांखे यादि कयो आहे। ॻोठु अव्हांजो आहे बशाम खान रिंद, शाइर गाज़ी खान रिंद, फैज़ान अली रिंद, रिज़वान अली रिंद एंड शहज़ाद अली रिंद ऐं नंढड़ी कोनैन ज़हरा, अव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहियूं, छो लाजवाब आहे। अव्हांखे अलाह ख़ुशि रखे, आबाद रखे, अव्हांजी पूरी टीम खे महिरबानी आहिनि अव्हांजूं। तव्हां मास्टर वली खे ॿुधणु चाहियो आहे, असां कोशिशि कंदासीं त मास्टर वली खे बि अव्हांजे लाइ प्ले करियूं, महिरबानी आहिनि अव्हांजूं। ॻोठु जीअंद खान जमाली खां असांखे यादि कयो आहे, मीर मोहम्मद जमाली अदा प्रोग्राम लाजवाब आहे। सुणा साईं महिरबानी आहिनि अव्हांजूं, अव्हांखे बि असां भली कार चवंदासीं। ॻोठु बचियल चांग खां असांखे यादि कयो आहे, ग़ुलाम शबीर चांग, चिभड़ चांग एंड सलीम चांग, इरशाद ऐं नंढड़ो शोहिब चांग, अदा ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, सदाई मुस्कुराईंदा रहो, आमीन सुम आमीन, महिरबानी आहिनि अव्हांजूं। ॻोठु अली तुर्क हेट ख़लीफ़ो क़ासिम खां असांखे यादि कयो आहे, आसिफ अली हिंगोर जो, अशफाक अहमद एंड नंढड़ी अंबर फातिमा, तव्हां आल टीम खे सलाम चयनि। वालेकुम असलाम, महिरबानी आहिनि अव्हांजूं। ख़ालिद नोतकाणी फ्रॉम मातली, ख़ालिद नोतकाणी साहिबु अव्हांखे बि असां भली कार चवंदासीं, तव्हां सलाम चया आहिनि। वालेकुम असलाम, महिरबानी अव्हांजूं। दरगाह पीर सुमार खां असांखे यादि कया, अली मोहम्मद, नूर मोहम्मद एंड शाहज़ैन लगारी अदा फौजिया प्ले कंदा, त बिल्कुलु नेक्स्ट सॉन्ग फौजिया जो ई आहे, महिरबानी आहिनि अव्हांजूं। अव्हांखे बि असां भली कार चवंदासीं, ख़ुशि आमदीद चवंदासीं। शहर ॾाॾू खां असांखे यादि कयो आहे, हाजी ॻोठु वांझो आहे, हाजी मोहम्मद रहीम लाशारी खां, हाजी अब्दुला लाशारी एंड करीम बख्श लाशारी एंड हाजी गुल हसन गुल लाशारी, खाड़क ग्रुप आहे अव्हांजो, महिरबानी आहिनि अव्हांजो। वंस अगेन अव्हांजो SMS पहुतो आहे, शहर ॾाॾू खां ॻोठु आहे अव्हांजो, हाजी मोहम्मद रहीम लाशारी, हाजी अब्दुला लाशारी एंड करीम बख्श लाशारी, हाजी गुल हसन गुल लाशारी, तव्हां सॉन्ग बिल्कुलु सॉन्ग प्ले कंदासीं अव्हांजे लाइ, खाड़क ग्रुप आहे अव्हांजो, महिरबानी आहिनि अव्हांजो। ॻोठु हाजी मोहम्मद रहीम लाशारी खां असांखे यादि कयो आहे, शहर लॻे शहर ॾाॾू खां, हाजी गुल हसन गुल लाशारी, अब्दुल ख़ालिक लाशारी, फौजी अब्दुल मालिक लाशारी एंड मोहम्मद आक़िब एंड मोहम्मद आसिम लाशारी। भाउ ग़ुलाम क़द्र अव्हांजो प्रोग्राम ॿुधूं पिया ऐं प्रोग्राम लाइ जवाबु आहे, इंतज़ारु रहंदो आहे अव्हांजे प्रोग्राम जो। ऐं सर यूनस एंड शाहनवाज़ ख़ासकली एंड अब्दुल रज़ाक दर्स जे लाइ मां सलाम चया आहिनि। वालेकुम असलाम, महिरबानी आहिनि अव्हांजूं। हिकिड़ो ज़बरदस्त सॉन्ग प्ले कयो आहे अव्हांजे लाइ, शहज़ाद अली गिराणो, शाहवेज़ अली गिराणो, शीज़ान अली गिराणो, शाहज़ैन अली गिराणो साहब, तव्हांखे बि असां भली कार चवंदासीं, ख़ुशि आमदीद चवंदासीं। पोजा सुमरो जो आवाज़ आहे, अॼु हिडकी आहे वारो वार ॿधी, शायदि सजण मुंहिंजी सार लधी, लॻे त नथो जो असांजो सजण असांजी सार लहे। अॻूणे दौर में जॾहिं माण्हू खे हिडकी थींदी हुई त पोइ ईअं ई चवंदा त लॻे थो त कंहिं असांजे रिश्तेदार सारियो आहे, कंहिं प्रेम प्यारे सारियो आहे, तॾहिं असांखे हिडकी लॻी आहे। पर जेकॾहिं डॉक्टर चवनि था त पाणी पीअंदा करियो, तव्हांखे का बीमारी आहे।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अखियन जी मुफ्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियन जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंध फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में डि॒नियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक़ बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

वेलकम बैक। एक दफ़ो ॿीहर भली कार रही ख़ुशि आमदीद चवंदासीं तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम रस रिहाण में। रस रिहाण पेश कयो पंहिंजे जी एफ एम 90.4 मातली जे लाइ स्टूडियो मां। वक़्त जो अहसास राति जा 7:49 थी चुका आहे। पहिरीं कलाक जो जेको सफ़र आहे उहो बिल्कुलु पंहिंजे मंज़िल मक़सूद जी तरफ़ रवां दवां आहे। ऐं ज़िंदगी जो जेको सफ़र आहे असांखे त ख़बर न आहे त असांजी ज़िंदगी जो ईंदड़ पल हूंदो बि अलाए न, पर जेका दुनिया उमेदुनि ते आहे सो इंसान वॾा वॾा वाइदा वॾा वॾा वचन कंदो आहे। पर ॾिसणो इहो आहे त जेको ज़िंदगी जो पल आहे उहो असांजी ज़िंदगी जो आख़िरी पल आहे। सामान 100 बरस का मगर पता पल का नहीं। दे फतेहपुर लगे अच्छा, दे फतेहपुर का असा याद किया आसिफ अली हालो, हाकम अली हालो, बख्शण हालो, यासर अली हालो, पांधी हालो एंड हबीबला हालो। फरमाइश अवां दिनी है अला दिनु खास केली जे ला त बिल्कुलु अला ॾिनो ख़ासि किले सां प्ले करण जी कोशिशि कंदासीं। महिरबानी आहिनि अवां जूं हालो ब्रादर्स आसिफ अली एंड हाकम अली, महिरबानी आहिनि। वंस अगेन अवां जो एस एम एस पहुतो आहे असां ताईं आसिफ अली हालो एंड ग़ुलाम कादर अदा ब्रेक घटि हलाईंदा कयो। महिरबानी आहिनि अवां जूं आसिफ अली हालो। हुन सां ई छा करियूं, जेको ब्रेक आहे उहो ज़िंदगी जो हिसो आहे। ज़िंदगी में जेके ब्रेक ईंदा आहिनि उहे जेके ब्रेक आहिनि असांखे वठणु घुरिजनि, स्टेप बाय स्टेप हलणु घुरिजे। अब्दुल हुसैन गिराणो एंड राशिद सोलंगी साहब अवां असांखे यादि कयो आहे, महिरबानी आहिनि अवां जूं। कोठाजी राहिब सोलंगी खां असांखे यादि कयो आहे असांजो उस्ताद साईं इस्माइल सोलंगी, ज़ुबैर अहमद सोलंगी, सुहेल सोलंगी एंड ग़ुलाम रसूल सोलंगी, राजा सोलंगी अवां सां गॾु गॾु महिरबानी आहिनि अवां जूं। नऊं पको स्टाफ खां आसिफ कुंभर, फिदा हुसैन चाचड़, वीरम शर अवां असांखे यादि कयो, अवां सां गॾु ॾाॾा ख़ालिद कंबराणी, मोहम्मद रहीम गिराणो साहिब अवां सां गॾु गॾु महिरबानी। मोहबत तूं वॾा वॾा वण। हिकिड़ो ज़बरदस्त सॉन्ग प्ले कयो आहे अवां जे लाइ, दिल चाहे पई त हीउ सॉन्ग अवां ताईं पहुचाइजे। गोठाजी वाइद ॾिनो गिराणो खां गुल मोहम्मद ऐं गिराणो बिलावल ऐं गिराणो नबील अहमद ऐं गिराणो हाजी पीरू गिराणो ऐं मोहम्मद रहीम गिराणो साहब, अब्दुल गफूर, अब्दुल शकूर गिराणो। महिरबानी अवां सभिनी साथियुनि जूं ऐं मोहम्मद चांडियो।

हेलीकॉप्टर टेक ऑन जिला प्ले के आए सुरोया सुमरो जो आवाज है खुशी मोहम्मद कपरी साहब हवा संगे पेंजी मौजूदगी जो एहसास देरा हो मेहरबानी है नवा जो अस्सलाम वालेकुम अदा वालेकुम अस्सलाम भा गुलाम कदर केड़ा हाल है नऊ ठीक ठाक आया गुलाम सुबानी लगारी अब्दुल लतीफ लगारी आजम अली एंड रावल गुलाम रिजवानी ऐं जो नंढड़ो सरदार अली लगारी ऐं नादिर अली लगारी फौजिया समरो खे ॿुधण चाहियो आहे जेको असां प्ले करे चुका सीं महिरबानी आहिनि अव्हां जूं वोट मोहम्मद यूसुफ नोतकाणी खां सलाम सिंध वालेकुम असलाम ज़ीशान मुदसर ऐं मोहम्मद कुमेल नोतकाणी ज़ुल्फ़कार आज़ाद अदा कीअं आयो ऐं

कोठ ताज मोहम्मद कपरी खां असांखे यादि कयो आहे। शहर झुडो खां ख़ुशी मोहम्मद कपरी, ज़ुल्फ़कार अली कपरी, नंढड़ो हाजी कमरदीन कपरी अदा कीअं आयो प्रोग्राम ॿुधूं पिया। प्रोग्राम ज़बरदस्त आहे, सॉन्ग सिलेक्शन अला जवाबु आहे। महिरबानी आहे न वांजो ख़ुशी मोहम्मद कपरी एंड ब्रदर।

शेर झोल खां असांखे यादि कयो आहे मोहम्मद नसीम हैदरी एंड नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी साहिबु, महिरबानी आहे तव्हांजूं।

कुंडली खां चोवन कुमार असां खे यादि कयो आहे। अव्हां खे बि असां भलीकार चवंदासीं, ख़ुशि आमद ईद चवंदासीं। डॉक्टर अनीता एंड संगीता पारस अव्हां सां

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
5: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 03-36-36-879 ऐं 03-12-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
6: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
7: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार लाइन लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 0331252578 6
7: जी हाँ 2315525786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

गोड हाजी जान मोहम्मद लाशारी खां असके याद के अब्दुल शकूर लाशारी एंड नंडड़ो उबैदुल्ला मेहरबानी अवां के बसा भलीकार चवंदासी मेहरबानी वंस अगेन अवां जो मोहम्मद यूसुफ सहरात अवां संगे याद के अलाए त किथा अवां लिखियो है मोहम्मद यूसुफ सहरात मेहरबानी लख थोरा अवां जा शेर डाडू गोठ हाजी मोहम्मद रहीम लाशारी खां हाजी अब्दुल्ला लाशारी अवां लिखियो त मुजो भाइटियो हाजी अच्छा हाजी अब्दुल मालिक लाशारी अज छुट्टी ते आयो है अल्लाह पाक खां दुआ है त हन के कामयाब करे आमीन सुम आमीन दुआन जला जडी पे तखणो त असा के जी एफ एम जी पूरी टीम के पेंजी दुआन में जरूर याद रखजो मेहरबानी आइन हाजी अब्दुल्ला लाशारी साहब अवां जो शेर झोल खां असांखे यादि कयो आहे मोहम्मद नसीम हैदरी फ़क़ीर मोहम्मद हैदरी शुजात हुसैन जलालाणी एंड अख़्तर इख़्तियार हुसैन जलालाणी महिरबानी आहिनि अवां जूं अवां खे बि असां भलीकार चवंदासीं ऐं गोठा जी हमदा लगारी खां दोस्त मोहम्मद लगारी ग़ुलाम क़ादिर लगारी साहिबु अवां खे बि भलीकार चवंदासीं महिरबानी आहिनि अवां जूं गोठ दरगाह पीर मदार शाह खां लडनूफ पोड़ो मला नंढड़ो सुमार अली मला वफ़ा अली बख्श चियांडियो महिरबानी अवां जूं ऐं मातली खां मूमल असांखे यादि कयो आहे महिरबानी मूमल अवां जूं शहज़ाद अली गिरणो शावेज़ अली एंड शीज़ान एंड शाहज़ैन अली गिरणो नूप को स्टॉप खां अवां असांखे यादि कयो महिरबानी अवां जूं उस्ताद मुमताज़ ब्रोही अवां असांखे यादि कयो आहे नवाब शाह खां महिरबानी अवां जूं लाला खान समूह साहब अवां असांखे पंहिंजी मौजूदगी जो अहसासु ॾियारायो अलाए त किथां खां महिरबानी आहिनि अवां जूं लाला खान समूह हिकिड़ो एसएमएस असांजी पहुतो आहे अनकम्प्लीट ॻोठ मोहम्मद अज़ीम ख़ासकेली खां असांखे यादि कयो आहे किंग नदीम जान ख़ासकेली ऐं उहा सां गॾु ग़ुलाम हुसैन ख़ासकेली सिंध पुलिस नंढड़ो मुज़म्मल हुसैन ख़ासकेली अवां खे बि असां भलीकार चवंदासीं अवां जो एसएमएस अनकम्प्लीट पहुतो असां ताईं जेतिरो पहुतो उहो असां शामिल कयो महिरबानी आहिनि अवां जूं असांजो टेक्निकल साथी शाह नवाज़ ख़ासकेली साहब अवां खे बि असां दिलि जे अंगण में भलीकार चवंदासीं रब नवाज़ ख़ासकेली एंड अब्दुर्रज़ाक दर्स साहब अवां असां सां गॾु हमेशह रहंदा आहियो ऐं जेको असांजो आवाज़ अवां ताईं पहुची रहियो आहे बिल्कुलु असांजे टेक्निकल साथियुनि जे आधार रही आवाज़ अवां ताईं पहुची रहियो आहे हिकिड़ो सॉन्ग प्ले कयो अवां जे लाइ ज़बरदस्त सॉन्ग आहे शमन अली मीराली जो आवाज़ दिलि वारो माण्हू ॾुखियो विसरंदो आहे दिल वारो माण्हू ॾुखियो विसरंदो आहे ऐं ॿियो वरी जिते माण्हू पैसा घुरंदो आहे उहो बि ॾुखियो विसरंदो आहे। अवां जी राय छा आहे?

हुन खां पोइ थोरो स्पेस ॾिजो, पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ, पंहिंजे शहर, पंहिंजे वण, पंहिंजे वसंती जो नालो ज़रूर लिखिजो। ऐं प्रोग्राम जे हवाले सां कुझु चवणु चाहियो, का राय, का कमेंट्स, त बिल्कुलु लिखी करे हुन एस एम एस खे उमाणींदा, सेंड कंदा 88 81 ते। अवांजा सनिया, अवांजा पैगाम काफ़ी तइदाद में पहुतल आहिनि असां ताईं। मुश्ताक अली लाशारी एंड बाबू लाशारी जामोट फार्म रीचल खां असांखे यादि कयो, महिरबानी आहिनि अवांजो, अवांखे बि असां भली कार चवंदासीं दिल जे अंगण में। बरकत अली खासकेली, फिदा हुसैन खासकेली एंड शहबाज जान खासकेली, महिरबानी आहिनि अवांजो, अवांखे बि असां भली कार चवंदासीं। ऐं असांजे टेक्निकल साथी शाहनवाज़ खासकेली जे हथनि में गरमा गरम चांहि जो कप ऐं मूंखे इशारो त सोन खां पोइ ई चांहि गॾु जी पीअंदासीं। महिरबानी आहे नवां जूं शाहनवाज़ खासकेली, असांखे इहा ई उमेद हुई। कोट मोहम्मद अज़ीम खासकेली खां उस्ताद अमीन वाडो एंड साइन ॾिनो खासकेली होटल वारो, ऐं चांहि सां गॾु गॾु वरी होटल वारो बि पहुची वियो। महिरबानी आहिनि अवां सभिनी साथियुनि जूं। मलहा गुरु अचा ॻोठ अवां लिखियो, मलहा ग्रुप दरगाह मुर्शिद साईं मेहदार पीर खां असांखे यादि कयो, अज़ीज़ मला, गुल हसन मला, शायर अली नवाज़ सोढो कराची एंड साईं शो बेस्ट आहे। साईं फौजिया प्ले कंदा त बिल्कुलु फौजिया प्ले थी चुकियो आहे अवांजे लाइ, महिरबानी आहिनि अवांजूं।

0: मालूम मग खां असांखे यादि कयो आहे मुस्कान, अव्हांखे बि भली कार चवंदासीं, महिरबानी अव्हां जूं। शेला गुल जो आवाज़ प्ले कयो आहे अव्हां जे लाइ, छो नाराज़ आहीं?
1: कहिड़ी ग़लती थी यार, नथो ॻाल्हाए छा ते नाराज़?
0: कोट मोहम्मद अज़ीम ख़ासि खेली खां अमजद अली ख़ासि खेली दुकान वारो, महिरबानी अव्हां जूं।

जबरदस्त सॉन्ग मास्टर वली जो आवाज़, मास्टर वली जे लाइ काफ़ी दोस्तनि फरमाइश हुयूं। निज़ामाणी खां मोहबती मंगण, निज़ामाणी नंढड़ो अहसान, निज़ामाणी अदा सॉन्ग उर्दू नाहिद अख़्तर जो प्ले कंदा। असां कोशिशि कंदासीं त वक़्तन ब वक़्तन अवां जूं फरमाइशूं प्ले करियूं। महिरबानी आहे नवां जूं मोहबती मंगण निज़ामाणी। ॻोठ हाजी मोहम्मद रहीम लाशारी खां असांखे यादि कयो अलॻि शहर ॾाढो खां, हाजी गुल हसन गुल लाशारी, अब्दुल ख़ालिक लाशारी, फौजी अब्दुल मालिक लाशारी, एंड मोहम्मद आकब लाशारी, मोहम्मद आसिम लाशारी, भाउ गुलाम कदर प्रोग्राम ॿुधूं पिया ऐं इंजॉय करियूं पिया। महिरबानी आहे नवां जूं। ॻोठ जाम ख़ासि खेली, शाह वाह खां इरफान अली ख़ासि खेली, आरिफ अली ख़ासि खेली, अदा ज़फ़र अली ख़ासि खेली, एंड ज़फ़र अली ख़ासि खेली, एंड मुबारक गुल ख़ासि खेली, एंड ख़ासि खेली ब्रादर खे सलाम चयनि। वालेकुम असलाम। महिरबानी आहे नवां जूं ख़ासि खेली ब्रादर।

वेलकम बैक एक तो बेभली कर रही खुश आमदीद चौंदा सौ के पंज प्रोग्राम रस रिहण जो बेस के पंज जी एफ एम 90.4 मातली जे लाइव स्टूडियो में इन सफर में आऊं आवां जे सफर जो साथी यार जे गुलाम कादर गिरानो वक्त जो एहसास रात जा 8:38 थी चुका है असान जो ही आवां जो साथ 22 मिंट बाकी हयाती जो हार सलामत रहो तो साथ जिंदगी ताई बरकरार होंदो। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अहमद अली और इमरान अली कामरान अली एंड एजाज अली एतजाज अली शेर फ्रॉम टंडो मोहम्मद खान गांव खैरो बाजार से आपने हमें ज्वाइन किया है, आपको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें याद किया, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, आपने प्रोग्राम की तारीफ की है और आपने सलाम कहा है वालेकुम असलम। गोट यूसुफ खासखेली का असंग याद किया, रशीद अली खासखेली सलाम अदा वालेकुम असलम। मला ग्रुप दरगाह मुर्शिद साईं महदार पीर का असंग याद किया है अजीज मला गुल हसन मला शायर अली नवाज सोडो कराची एंड साईं शो बेस्ट आए जलाल प्ले कंदा तो वाह वाह थी वेंदी, लेकिन असां बि कोशिशि कंदासीं त अवां वाह वाह करियो। गोठ गुलाब लगारी खां असांखे यादि कयो आहे काफ़ी ॾींहनि खां पोइ साबिर लगारी सुल्तान लगारी रिज़वान लगारी असलाम वालेकुम वालेकुम असलाम शो नाइस, महिरबानी आहिनि अवां जो अवांखे भली कार चवंदासीं ख़ुशि आमद ईद चवंदासीं। दे फतेहपुर खां असांखे यादि कयो आहे आसिफ अली हालो हाकिम अली हालो बख्शन हालो यासिर अली हालो फरमाइश अलाडनू खासखेली बिल्कुल अलाडनू खासखेली प्ले करण जी कोशिश कंदासीं, महिरबानी आहिनि अवां जी अवांखे असां भली कार चवंदासीं। शहजाद अली किराणू शावेद अली किराणू शीज़ान अली एंड शाहज़ैन अली किराणू साहब अवां असांखे यादि कयो अवांखे बि असां भली कार चवंदासीं। छोट मोहम्मद अज़ीम खासखेली खां असांखे यादि कयो आहे किंग नदीम जान खासखेली एंड ताज मोहम्मद खासखेली नाही वरियाम खासखेली मिठा नाही वरियाम चई रहियो आहे अचो तव्हांखे बोतल प्यारियूं महिरबानी आहिनि अवां जूं या अवां जी अनमोल मोहबत आहे जो असांखे दिलि सां दावत ॾिनी आहे। आबिद शेख अवां असांखे यादि कयो दरगाह शेख रिहाण खां महिरबानी आहिनि अवां जो आबिद शेख गफ़ार जरवार एंड बबलू जरवार फ्रॉम साहिब खान जरवार टंडो वाला यार महिरबानी आहिनि अवां जूं अवांखे असां भली कार चवंदासीं ख़ुशि आमदीद चवंदासीं। हाजी सहतो शहबाज़ खासखेली एंड साले सोलंगी ताज मोहम्मद सहतो आसिफ सहतो असद सहतो गोठ हाजी सहतो खां अवां असांखे यादि कयो अवांखे बि असां भली कार चवंदासीं। सतूरो मकवाणू अवां असांखे यादि कयो अवां सलाम अचे आहिनि वालेकुम असलम, अवां वक़्तु मौजूदु हुयो असांखे ॿुधो पिया ऐं पंहिंजी मौजूदगी जो अहसासु ॾियारायो। जामोट फार्म रिचल खां मुश्ताक अली लाशारी बाबू लाशारी थर नगर पार्कर खां असांखे यादि कयो आहे रजब अली समूह एंड जाम खान समूह, असां सभु मिली करे अवांजो प्रोग्राम ॿुधूं पिया, प्रोग्राम ज़बरदस्त आहे, महिरबानी अवां जूं अवां पाण ज़बरदस्त आहियो। दोस्तो इंसान जी जेका मिज़ाज हूंदो आहे इंसान जी जेका दिलि हूंदी आहे उहा अगरि ख़ुशि आहे त पोइ हुनखे हर चीज़ वणंदी आहे। हिकिड़ो सॉन्ग प्ले कयो आहे अवां जे लाइ सोडी दीवानी जो आवाज़ ऐं सोडी दीवानी जे लाइ बि काफ़ी दोस्तनि फरमाइश कई हुई ऐं ख़ासि खेली ब्रादर्स अवां चयो त सोडी दीवानी ज़रूरु प्ले कंदा। किंग नदीम जान खासखेली गुलाम हुसैन खासखेली मुज़म्मल हुसैन खासखेली अवां जे लाइ

0: के हो तो आवाज भी सिंची है। GFM 88 नेटवर्क सिंची आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अखियुनि जी मुफ़्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियुनि जे सभिनी मरीज़नि लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ़्त अखियुनि जी सर्जिकल कैंप। प्रोग्राम दाख़िला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज़ अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियुनि जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधु फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी, मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेज, खाधो, चश्मा ए दवाऊं मुफ्त में डिनियूं वेंदियूं। मरीज पान सा गड मौसम मुताबिक बिस्तरो ए थाव खणी अचन। तरफा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

वक्त घट मौका लोग सख्त मांजा सनी मांजा पैगाम मांजा एसएमएस का भी तादाद में गोठ टन मोहम्मद खान का सुभानी लगा रही हमारा संग याद को मेहरबानी हमारा संग अब्दुल लतीफ लगा रही गोठ पाबू वीरो का संग याद को है दिलीप कुमार मेघवाड़ नोवल राय मेहरबानी आई नवा जो दानिश हमारा संग सूरज गुल काफी दोस्त एसएमएस पहुंचन था सम टेक्स्ट मिसिंग में हूं कद कदम अदा गुलाम कदर असलम वालेकुम असलम सुभानी लगारी फ्रॉम टंडो मोहम्मद खान अदा असम तुदू पाबानी नवा जो अवजा सनी अवजा पैगाम काफी तैदाद में मुखा रहजी वया सादिक फकीर के इन मधुर आवाज से छे वस प्रोग्राम रस रिहान जो सफर बिल्कुल पैंजी पुजाणी से पहुतो अगर साज सगे साथ दिनों हयाती जो हर सलामत रहे तो इंशाल्लाह इंदल अरबा दी पेंजी मुलाकात थी सेम टाइम सेम चैनल ते तेसने पेंजो ए पेंजे चाहिंदड़न जो रख जो ख्याल ए वद खा वद रख जो उन जो ख्याल जेको रखे तो अवां जो ख्याल गोन जेला जरे पत खणो तो मु नाचीज गुलाम कदर ए गिराणो ए जी एफएम जी पूरी टीम के पेंजी दुआन में जरूर याद रख जो उनका विछण मेल सो ये चेम रब उन के पेंजे मान में रख जा साथ हलंदो रहे लाट भरंदी रहे जडा पेर ते दा खैर अल्लाह हाफिज़।

0: गाली गलोच का कल्चर जो है उसे सियासत में दाखिल किया जाए। ये किसी सूरत भी ना कानून ना आईन ना सियासी अखलाकियात इस बात की इजाजत नहीं देती।
1: रियासत के यरगमाल बनाए को भी मुतालबो नथो मंझाए सके। जाती एजेंडा के कौमी मफाद दे तरजीह न दिनी वे। हुकूमत गालन जा दर बंद नाहन कया। पीटीआई जाती मफादन के पासे ते करे मसलन जे हल लाय अगते अचे। वजीर आजम जे सलाहकार राणा सनाउल्लाह चयो आहे त पीटीआई इस्लामाबाद ते चढ़ाई जी कोशिश करे रही आहे। लॉन्ग मार्च लाए केपीए जा सब वसीला इस्तेमाल कया पे वञन। अफगानिस्तान मां दहशतगर्दी थी आहे। अफगान पॉलिसी ते पीटीआई खां सवाइ समूरी कौम मुतफिक आहे।
2: पीटीआई चेयरमैन हुकूमत का गैर मशहूर गालियों करने जो मुतालबो कर छोड़ो। बैरिस्टर गोहर चाहिए तो जितो वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से लगाओ पे वे एतरो वक्त गालियों क्यों वन हा तो मसलो हल थी वे हा। इस्लामाबाद असो है लॉन्ग मार्च जरूर इस्लामाबाद इंद गालियों बीहर थे घुर्जन ब्रेक न लगन घुर्जे। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई है तो पीटीआई बानी से मुलाकात कर बिना गालियों न थन्दू। हुकूमत मसले जो हल चाहे थी तो बानी से मुलाकात कराए।
1: खैबर पख्तूनख्वा में वधंदड़ दहशतगर्दी के हर कीमत ते रोकणो पवंदो। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो दहशतगर्दी खिलाफ कुर्बानियों साराह जोगियो आहिन। ख्वाहिश है तो केपी बे मुल्क के बेन सूबन जिया तरक्की करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो वफाकी वजीर अमीर मुकाम से मुलाकात दौरान गालियों। वफाकी वजीर अमीर मुकाम कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से वजीर आजम के ब्रीफिंग डिनी। वजीर आजम की कश्मीर ए गिलगित बल्तिस्तान में अवामी भलाई वारा कदम जारी रखने की हिदायत।
2: पीपल्स पार्टी सदाई जाती मफाद के कौमी मफाद से तरजीह दिनी है। केपी के गवर्नर जो अमन अमान बाबत इजलास करण भी गैर आइनी है। केपी के वे वजीर सुहेल आफरीदी काबीना के खिताब कन्दे है तो पीपल्स पार्टी माजी में भी गलत किरदार अदा करती रही है। गवर्नर पारा इजलास की सदारत करण आइन ए जमहूरियत ते हमलो है। केपी पुलिस के पंजाब पुलिस पढ़ने की कोशिश न कई वे। केपी हुकूमत सूबे में अमन लाय संजीदा है। केपी में ऑपरेशन थे नींदुसि।

0: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सिहतमंद मैदो, सिहतमंद ज़िंदगी।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर, राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, चंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842। अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोटकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: खुशखबरी खुशखबरी अखियन जी मुफ्त कैंप फारहान शुगर मिल्स शेख बिरकियो में अखियन जे सभिनी मरीजन लाइ 3 ॾींहं वारी मुफ्त अखियन जी सर्जिकल कैंप प्रोग्राम। दाखिला ऐं ऑपरेशन 13 ऐं 14 अक्टूबर बरोज अंगारे ऐं अरबा जे ॾींहुं फारहान शुगर मिल्स में लॻाई पई वञे, जंहिं में अखियन जी बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर ऐं उन्हनि जी टीम अखियुनि जा मुफ़्त फेको ऑपरेशन कंदा ऐं लेंसेज लॻाईंदा। अवां बि हिन मुफ़्त अखियुनि जी कैंप मां भरपूर फ़ाइदो हासिल करे सघो था। हंधि फारहान शुगर मिल्स डिस्पेंसरी मिल कॉलोनी। नोट, सभिनी मरीजन के लेंसेस, खाधो, चश्मा ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं। मरीज पाण सां गॾु मौसम मुताबिक बिस्तरो ऐं थाऊं खणी अचनि। तरफ़ा मोहम्मद उमर अमीन बावानी, चेयरमैन बावानी ग्रुप।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331-252-5786।
4: जी हा, 2-331-5-5-786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।